अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडत पढ़न रखी सुर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग माश पायाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे गावन तुदनो

अपारा। सब त्यावह सब त्यावह तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्यावह संत हो जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा।

जन नानक तिन कुर्बाना, हर त्यावै हर त्यावै तुद जी, से जन जुग मैं सुख वासी, से मुकत पहे, जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी, जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी, जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सला

रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा कर तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछोड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखा है जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला,

साध संगत पाज केवल नाम संजाम लाग पाव जल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाउ जाप तप स

जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दय मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुच जो करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा।

नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जछन उपजायो। आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पल मो बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा धरत तब देहे अपारा। जब अकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे तार सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्वकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असम।

महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक है रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत पूज खान बहुरे राच दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट पयो संक्र इकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव,

बार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करु रणकाता जे अस तुझ तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हवन मरे पुरख जवन पाग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे।

रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सकै ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा।

जिसका सबसे आधारो। जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो। एहे वसत तज

जिन तारे ब्रह्मांड खंड हर ताको नाम जपी जा रे। मन की मत त्यागो हर जन हुक्म बोझ सुख पाई रे। जो प्रभु करे सोई पहल मानो सुख दुख ओही तिहाई रे। कोट पतत उधार

दर्शन पर से है गुरु है। जन्म मरण दुख हो वै शिव तख समि नूर अरसह पुरस तुद डिठे सचे पात सा मल जन्म जन्म।

सब किछ तुम ही ते हुआ, आप बणत बनाई। दर्शन भेटत साधका, नानक गुण गाई। सब किछ तुम ही

अष्टपदी जह मात पिता सुतमीत न पाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाय जह महाप्यान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चलै जह मुश्किल हो वैत भारी हर को नाम किन माहे उधारी अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै अनिक माया रंग तिक न बुझावै हर का नाम जपत आघावै जे मार गेह जात केला तै हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा ते आईऐ नानक गुरमुख परम गत पाईऐ छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत तह पार पराही अनिक बिघन जय आई सुंगारै हर का नाम तत्काल उधारै अनिक जोन जन्मे मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हौ मैला मल कबू न तूवै हर का नाम कूट पाप खोवै ऐसा नाम जपू मन रंग नानक पाई है साध कै संग जे मार के गने जाहे न कोसा हर का नाम उहा संग तुसा जे पैटे मा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहां पंथ तेरा को न सियानू हर का नाम तह नाल पछानू जह महाप्यान तपत बहकाम तह हर के नाम की तुम परछाम जा त्रिखा मन तुझ आकर खै तह नानक हर हर अमृत बरखै भगत जना की बरतन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जनकूट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नु दान मन तन रंग रते रंग एकै नानक जन कै बिरत विवेकै हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परे न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहि बियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै मालक जीना हर धन जन को प्रभ दीना हर हर जन कै ऊट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते तरे पार जात एहु हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लत्था नाम की महिमा संत हृदय वसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संगवड भागी पाईऐ संत की सेवा नाम ते आईऐ नाम तुल कछ अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावै जन को ए श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्ब टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमूल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया सगल त्याग बन मध्ये फिरिया अनेक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रतना
शरीर कटाए होमे कराती, वर्त नेम करे बहुपाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपी एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, महा उदास तपी सरथी वे, अग्न माहे हुमत प्राण, कनिकस्व है वर भूमदा, न्यौली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संजमत साधन, निमक निमक कर शरीर कटावे, ताओ पी होमे मैल न जावे, हर के नाम समसर कछ नाही, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाही, मन कामना तीर दे छुटे, गर्भ गुमान न मन ते उठे, सोच करे दिन सरात, मन की मैल न तन ते जात, इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबू न बिखिया टरे, जल तो वह बहु दे अनीत, शुद्ध का हुई काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पथत बहमूच, बहुत सियाणप जम का पौ व्यापै, अनिक जतन कर तृष्ण न त्रापै, भेख अनेक गनि बुझै, कूट पाव दरगै नहीं सिजै, झूठ सुनायु पयाल, मोह व्यापह माया जाल, अवर करतूत सगली जमडाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जप दुख जाय, नानक बोले सह सुभाई, चार पदार्थ जी को मांगे, साजना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे, जे को अपनी शोभा लोरे, सा संगे होमे छोरे, जे को जन मरण ते डरे, साजना की सरनी परे, जिस जन को प्रदर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा, सगल पुरख में पुरख प्रधान, सासंग जाका मिटे अभिमान, आपस को जो जाने नीचा, सो गणिय सब ते उच्चा, जाका मन हो सगल किरीना, हर हर नाम तिन कट कट चीना, मने अपने ते बुरा मिटाना, पिक है सगल सृष्ट साजना, सुख दुख जन समदृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा, निर

सगल कटा कव देव दान, करन करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी, अपनी गत मित जान हो आपे आपन संगा प्रवराते, तुमरी उस्त तुम ते होए, नान कवर न जान सकोए, सर्व धर्म सृष्ट धर्म हर को नाम, जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया, सा संग दुर्मत मल हिरिया, सगल उद्यम मैं उद्यम भला, हर का नाम जपो जी सदा, सगल बानी मैं अमृत बानी, हर को जसु रसन बकानी, सगल थान ते उत्तम थान, नानक जे कट वसै हर नाम, श्लोक निर्गुण यार एयाने आ, सुप्रभ सदा संभाल, जिन किया तिस चीत रख, नानक निभरी नाल, अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू सा सुवार सिगारिया, गर्भ अगन में जिने उबारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध, भर जो गुण भोजन सुख सूद, बिरद पया उपर साग सहन, मुख पयाओ बैठ को दैन, एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै, बख्श ले हो तो नानक सीजै, जे प्रसाद तारू पर सुख बसै, सुत प्रात मीत बनता संघ हसै, जे प्रसाद पीवै शीतल जला, सुखदाई पवन पाव कमुला, जे प्रसाद भोगै सब रसा, सगल समग्री संसात बसा, दीने हस्त पाव करने तरसना, तिसे त्यागवर संरचना, इसे दुग मुड़ंद व्यापे, नानक काट लिहो प्रव्यापे, आदंत जो राखन हार, तिस्यों प्रीत न करै गवार, जाकी सेवा नव निट पावै, तास्यो मूड़ा मन नहीं लावै, जो ठाकुर सत सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे, जाकी टहल पावै दर गहमान, तिसै बिसारै मुग्ध अजान, सदा सदैव भूलन हार, नानक राखन हार अपार, रतन त्याग कौडी संग रचै, सा छोड़ झूठ संग मचै, जो चढ़ना सो अस्थिर करमानै, जो होवन सो दूर परानै, छोड़ जाय तिसका श्रम करै, संग सहाय तिस पर हरै, चंदन लेप उतारै धोए, गर्द प्रीत भस्म संग होए, अंधकूप में पतत विकराल, नानक काड लिहु प्रभु दयाल, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करै दिन रात, बाहर भेखंतर मल माया, छुप सुनाई कछ करै छुपाया, बाहर ज्ञान ध्यान सुनान, अंतर व्यापै लूप सुआन, अंतर अगन बाहर तन स्वाहा, गल पात्र कैसे तरह अथाहा, जा कै अंतर बसै प्रव्याप, नानक ते जन सह समात, सुन अंधा कैसे मार्ग पावै, कर गह लेहु ऊड़ निभावै, कहा बुझारत बुझै डूरा, निष्कहिए तो समझै पूरा, कहा बिसन पद गावै गुंग, जतन करै तौ पी सुर भंग, कह पिंगुल पर्वत पर पवन, नहीं हो तू हा उस गवन, करतार करुणा मैं दीन बेनती करै, नानक तुमरी कृपा तरै, संग सहाई सुआवै न चीत, जो बैराई तास्यो प्रीत, बलवा के गृह भीतर बसै, अनद केल माया रंग रसै, दृढ़ करमानै मने प्रतीत, काल नयावै मूढ़े चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ बेकार महा लोभ त्रोह, आहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले हो अपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पै अरदास, जीव पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा मैं सूख कनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, उच्चे ते उच्चा भगवंत, सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी, तुम ते हुए सुआज्ञाकारी, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दा सदा कुर्बानी, श्लोक देन हार प्रभ छोड़ कै, लागे आन सुआए, नानक न सी जई बिना वै पत जाय, अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै, एक वस्तु कारण बिखोट गवावै, एक भी न दे दस भी हिर ले, तौ मूड़ा कहु कहा करे, जिस ठाकुर स्यो नाहीं चारा, ताको की जय सद नमस्कारा,
ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਾਹੂ ਮਨ ਊਠਾ, ਜਿਸ ਜਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ, ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ, ਅਗੰਤ ਸਾਹੁ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ, ਖਾਤ ਪੀਤ ਵਰਤੈਣ ਦੁਲਾਸ, ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ ਕਛ

की प्री सुखदाई कर कृपा नानका बलै लाई मिथिया तन तन कुटुंब सुबाया मिथिया होमै ममता माया मिथिया राजूबन धन माल मिथिया काम क्रोध विकराल मिथिया रथ हस्ती अस्तु वस्त्रा मिथिया रंग संग माया पीख हस्ता मिथिया त्रु मुह अभिमान मिथिया पशु पर कर्त गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथिया श्रवण पर निंदा सुन है मिथिया हस्त पर दर्भ कौहिर है मिथिया नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद मिथिया रसना भोजन अनुस्वाद मिथिया चरण पर विकार कौतावै मिथिया मन पर लोभ लुभावै मिथिया तन नहीं पर उपकारा मिथिया बास लेत विकारा बिन बूझे मिथिया सब भय सफल दे नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आर जा साच बिना कह होवत सूचा बिरता नाम बिना तन अंध मुखावता कै दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन वृथा बिहाए मेघ बिना ज्यो खेती जाए गोविंद भजन बिन वृथे सब काम ज्यो कृपन के निरार्थ दाम धन धन ते जन जी कट बस्यो हर नाउ नानक ताकै बल बल जाउ रह तवर कचवर कमावत मन निप्रीत मुखो गंडलावत जन हार प्रभु पर बीन बाहर भेख न काहू पीन उवर उपदेश आप न करे आवत जावत जन में मरे जिसका अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरे संसार जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया या पहमाने या पहया पाप करत नबेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नीरा उपाव से अनुप सगल ते रहत सब कछ जाने आत्म की रहत जिस पावे तिसले लड़ लाए थान थनंतर या सुमाए सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरी सलो काम क्रोध या लोभ मोह बिन सजाए अहंगमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदि जे प्रसाद शक्ति अमृत खाही तिस ठाकुर को रख मन माही जे प्रसाद सुगंध तन लावह जिसको सिमरत परम गत पावह जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याय सदा मने अंदर जे प्रसाद ग्रे संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावह तिसे त्याग तवर लुभावह जे प्रसाद सुख से सोइजै मन आठ पहर ताका जस गाविजै जे प्रसाद सब को मानै मुक्ता को जस रसन बकानै जे प्रसाद तिरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पावह नानक पद सेती कर जावह जे प्रसाद आरो कंचन देही लिव लावो तिस राम सनेही जे प्रसाद तिरौला रहत मन सुख पावह हर हर जस कहत जे प्रसाद तिर सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभता कह जे प्रसाद तुझ को न पहुँचै मन साथ साथ सिमरो प्रभु उच्चे जे प्रसाद पाए दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद अपुखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अस्वस्थ सवारी मन तिस प्रभ को कबहू न बिसारी जे प्रसाद बाग मिलक तना राख परोए प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सत्य सहत्याई सहत्याई जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रखै जे प्रसाद करे पुन बहुदानु मन आठ पैर कर तिसका ध्यानु जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को साथ साथ चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरौ सदा अनूप जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जस कहै जे प्रसाद सुनै करन नाद जे प्रसाद भेखै बिस्माद जे प्रसाद बोलै अमृत रचना जे प्रसाद सुख सहजे बसना।

जे प्रसाद हस्त कर चल है, जे प्रसाद संपूर्ण फल है, जे प्रसाद परम गत पाव है, जे प्रसाद सुख सह समाव है, ऐसा प्रभ त्याग और कत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो, जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल न मनो विसार, जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूढ़ तुता को जाप, जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसे जान मन सदा हजूरे, जे प्रसाद तू पावें साच, रे मन मेरे तू ता स्योराच, जे प्रसाद सब की गत हुए, नानक जाप जपै जप सोए, आप जपाए जपै सो नाओ, आप गावाए सुहर गुण गाओ, प्रभ कृपा ते हुए प्रगास, प्रभु दया ते कमल बिगास, प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मत उत्तम होए, सर्व निदान प्रभ तेरी माया, आप हु कछु न किन्हु लया, जित जित लावो तित लगै हरनाथ, नानक इन कै कछु न हाथ, श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कह सुमुक्ता हुए, सुन मीता नानक बिनवंता, साजना की अचरज कथास्तवदी, साधक संग मुखु जल होत, साध संग मन सगली खोत, साधक संग मिटै विमानु, साधक संग प्रगटै सुगयानु, साधक संग बुझै प्रभ नीरा, साध संग सब होत नबेरा, साधक संग पाए नाम रतनु, साधक संग एक ऊपर जतनु, साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा ब्रह्मा ही सुमानी, साधक संग अगोचर मिलै, साधक संग सदा प्रफुल्लै, साधक संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग हुए सब की रेन, साधक संग मनोहर बैन, साधक संग न कतहु तावै, साध संग स्थित मन पावै, साधक संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभु सुप्रसन्न, साध संग दुश्मन समीत, साधु कै संग महापुनीत, साध संग किस्यो नहीं बैर, साधक संग न भीगा पैर, साधक संग न ही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साधक संग न ही हो ताप, साधक संग तजै सव्याप, आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई, साधक संग न कब हूं तावै, साधक संग सदा सुख पावै, साध संग बस तगो चिर लह, साधु कै संग अजर सह, साधक संग बसै तानु चै, साधु कै संग महल पहुचै, साधक संग दिड़ै सब धर्मु, साधक संग केवल पार ब्रह्मु, साधक संग पाए नाम निदानु, नानक साधु कै कुर्बानु, साधक संग सब कुल उदार है, साध संग साचन मीठ कुटम निस्तार है, साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को बरसावै, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध के संग सब थान गामु, नानक साध के संग सफल जनामु, साध के संग नहीं कचकालु, दर्शन पेट तो होत निहालु, साध के संग कलुकत हरै, साध के संग नरक पर हरै, साध के संग हाँ हाँ सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावै, साधक संग न बिरथा जावे, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उतरै साध सुन रसै, साधक संग सुनो हर नाऊ, साध संग हर के गुण गाऊ, साधक संग न मन ते बिसरै, साध सुन सर पर निस्तरै, साधक संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग कट कट डीठा, साध संग भय आज्ञाकारी, साध संगत भई हमारी, साधक संग मिटै सब रोग, साध संग नानक साध पेटे संजोग, साध की महिमा वेद न जानै, जीता सुनै तीता बखियानै, साध गुपमा त्यो गुण ते दूर, साध गुपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा उचते उची, साध की शोभा मूझते मूची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई, सलोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै किस बिन कोए, नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अस्तपदी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक, जैसे सूर सर्व कौ शोक, ब्रह्म ज्ञानी कह दृश्यमान, जैसे राज रंग को लागै तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कह तीरजे ज्यों बसदा को खोदै को चंदन लेप,
ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यो पाव का सह सुभाओ। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी कह मन हुए प्रगास जैसे तारु पर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सुत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी उच्च दे उच्चा मन अपना है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जिन भई नानक जिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल किरी ना तुमरस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कचपुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी कुप्रयासु ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह। ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा। ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जप है सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कह कह रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बस है प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वित्ता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता। ब्रह्म ज्ञानी कह हुए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माही। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश। ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदाखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी कहो सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी साध जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी। श्लोक और तार है जो अंतरनाम सर्व में पेख है भगवान। निमक निमक ठाकुर नमस्कार है नानक अपर सगल निस्तार है। पदी मिथ्या ना ही रसना परसो मन में प्रीत निरंजन दर्शो परत्र रूप न पिख नित्र। साधक टहल संत संग हित कर न सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद भिख्या पर हरय मन की वासना मन ते टर इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कोट मत देखो ऐसा परसो। वैष्णो सोजी सुख पर सो प्रसन्न विष्ण की माया ते हुए भिन्न। कर्म करत हुए नहीं कर्म तिस वैष्णु का निर्मल धर्म। काहु फल की इच्छा नहीं बाचे केवल भगत कीर्तन संग्राचे। मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ वरै नाम जपावै नानको वैष्णु परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग। मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म। सासु पापा मलक होवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नितनीत मन तनि अर्पै बिशन प्रीत। हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन प्रबुद्धै राम नामा तुम मैं सुतै राम नाम सारस पीवै। उस पंडित कह वदे जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै। सो पंडित फिर जो नयावै वेद प्राण सिमरत बूझै मूल। सुखम मैं जानै स्थूल चौ वर्ण को देव उपदेश। नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। चौ वर्ण मैं जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए। सासु पावै जिन कोए कर कृपा अंतर उतारै। पस प्रेत मुक्त पात्र को उतारै।
सर्व रूप का उखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत की तय न पाइये धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास हो तिसका नाम सतराम दास हो आत्म राम तिसन दरी आया दास दसन तन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर्गे परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी परे सगल संग आत्म दास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभु की आज्ञा तुम हितावह जीवन मुख सो कहावे तैसा हरख तैसा सोग सदा अनंत है नहीं बेयोग तैसा स्वर्ण तैसी सुमाटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा विमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरता ईसाई जुगत नानको पुर कहिय जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित घर राख तैसा तिन नाऊ आपे करन करावन जोग प्रभावै सोई फुन होग पसुर आपो अंत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल सलोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रवरची बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पूजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट वन प्रमय उदासी कई कोट वेद की श्रोति कई कोट तपीश्वर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम त्याव है नानक करते कंत न पाव है कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अभिगात्म निकोर कई कोट पर दर्व को हिर है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रमाही कई कोट परदेश परमाही जित जित लाभ तित तित लगना नान करते की जान न करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजी रस भोगी कई कोट पंखी सर्व उपाय कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट शशिय सोन खेतर कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूतार है नानक जी जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद प्राण सिमरतर शास्त्र कई कोट की रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिरजीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जखि नर पिशाच कई कोट भूत प्रे सुकर मृगाच सब ते नेरै सब होते दूर नानक आप लिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्म जीव है मरै कई कोट भोजोनी फिर है कई कोट बैठत ही काहे कई कोट काल है थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया में चिंत जय जय पाणा तै तै राखे नानक सब कुछ प्रभु कै हाथे कई कोट भय वैराकी राम नाम संगतिन लिव लागी कई कोट प्रभु को खोजंते आत्म है पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिनको मिलो प्रभ विनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हुए आप सुप्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट हुए अवतार कई जुत किन्नु विस्तार कई बार पसर पासार सदा सुदय के कंकार कई कोट कीने बपात प्रगते हुए प्रमाए समात ताक अंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभु सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन हुवता तुम प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर भय सत सद ही जीवे कई कोट नाम गुण गावे आत्मरा सुख सह सुमावे अपने जन को साथ साथ सुमारे नानक कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई नानक तिस बलिहारण जल तल मही अल सोएष्टपदी करण करावन करण जोग जो तिस भाव है सोई होग
किन मैं थाप तापन हारा तने किस पारा वारा हुक्मे तारा तार रहा वै हुक्मे उपजे हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देख अपनी वडियाई नानक समय रहा समाई प्रभावै मानुख बत पावै प्रभावै ता पाथर तरावै प्रभावै बिन शास्त्र राखै प्रभावै ता हर गुण भाखै प्रभावै ता पत उधारै आप करै अपन विचारै दुआ सिरिया काप स्वामी खेलै बिकसै अंतर जामी जो पावै सुकार करावै नानक दृष्टि अवर न आवै कहो मानुख ते क्या हुए आवै जो तिस पावै सोई करावै इसके हाथ होए तन सब किछ ले जो तिस भावै सोई करे अनजानत विख्या मैं रचै जी जानत अपना बचै परमे भूला दह दिस तावै निमख माय चार कुंट फिरे आवै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन्ना मिले खिन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जा का दृष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै जाको अपनी करै बख्शीश ता का लेखा न गनै जगदीश जियो पिंड सब तिस कीरा सुर कट कट कून ब्रह्म प्रगास अपनी बनता बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई इसका बल नाही सहात करन करावन सर्व को नाथ अज्ञाकारी पपुरा जियो जो तिस भावै सोई फुंथियो कब हूँ ऊंच नीच मैं बसै कब हूँ सोग हरख रंग हसै कब हूँ निंद चिन्ह व्यवहार कब हूँ उबकाश पयाल कब हूँ बेता ब्रह्म विचार नानका मिलावन हार कब हूँ नृत्य करै बहुपात कब हूँ सोए रहे दिन रात कब हूँ माँ क्रोध विकराल कब हूँ सर्व की होत रवाल कब हूँ हुए बह बड़ राजा कब हूँ पेखारी नीच का साजा कब हूँ अपकीरत मैं आवै कब हूँ भला भला कहा वै ज्यों प्रवरा कहत भी रह गुर प्रसाद नानक सच कह कब हूँ हुए पंडित करे बख्यान कब हूँ मोन धारी लावै ध्यान कबू तट तीरथ स्नान कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबू कीट हस्त पतंग हुए जिया निक जुन पर मैं परमिया नाना रूप ज्यों स्वागी दिखावै ज्यों प्रभावै तिवै निचावै ज्यो तिस पावै सोई होए नानक दूजा वर न कोय कबू सा संगत पावै उस स्थान ते बहुर न आवै अंतर हो ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मंत्र नामृत एक रंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल में जले आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभु कह सत कुर्बान श्लोक सुखी बसै मस्कीनी आप निवार तले बटे बटे अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसका अंतराज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत आपस को करवंत कहा वै जन्म रह बहु जोन परमावै धन भूमिका जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै नानकी हां मुक्ता कै सुख पावै धनवंता होए कर गर्भावै तिन समान का संग न जावै बोलस कर मानु ऊपर करयास पल भीतरता का हुए बिना सब ते आप जाने बलवंत खिन में हुए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान सो जन नानक दर गए परवान कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले बिरथारे अनिक तपस्या करे अहंकार नरक सुर फिर अवतार अनिक जतन कर आत्मनि द्रवै हर दरगह को कैसे गवै आपस को जो भला कहावै तिसे भलाई निकत न आवै सर्व की रेंजा का मन होए कौ नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझ ते कछ होए तब इसको सुख नाही कोए जब हे जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब धारै को बैरी मीत तब लग निचल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माई तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हो छूटै सहस कटे लख कोट तावै तृप्त न आवै माया पाछै पावै अनिक भोग विख्या के करै न तृप्तावै खप खमरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ वृत्ति सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए करन करावने आपे आप सदा सदा नानक हर जाप
करण करावन करन हार, इसके हाथ कहाँ विचार, जैसी दृष्ट करी तैसा हुए, आपे आपा परोस हुए, जो किच कीनो स्वप्न रंग, सब ते दूर सब कै संग, बुझे देखे करे विवेक, आपे कापे अनेक, मरे न बिनसे आवे न जाए, नानक सद ही रहा सुनाए, आप विदेश समझे आप, आपे रचिया सब कै साथ, आप कीनो अपन विस्तार, सब का छुसकाव करने हार, उसते पिन कहो किच होए, थांत नंतर एक कैस होए, अपने चलताप करने हार, कौतुक करे रंग अपार, मन में आमन अपने माही, नान कीमत कह न जाई, सत सत सत प्रभ स्वामी, गुर प्रसाद किने वख्यानी, सच सच सत सब कीना, कोट मदे किने बिरले चीना, भला भला भला तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, कट कट सुनी श्रवण बख्यानी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत, श्लोक संत शरण जो जन परै, सो जन उदरनहार, संत की निंदा नानका बौर बौर अवतार अष्टपदी, संत कै दुखन आर जा कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुटै, संत कै दुखन सुख सब जाय, संत कै दुखन नरक मह पाए, संत कै दुखन मत हुए मलीन, संत कै दुखन सोभा ते हीन, संत के हते को रखै न कोय, संत कै दुखन तान प्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक पी तरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग जो लवै, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा में जलै, संत कै दुखन सब को चलै, संत कै दुखन ते सब जाए, संत कै दुखन नीच निचाए, ना संत दुखी का ताव को नाहे, नान संत पावै तो पीगत पाए, संत का निंदक मा अत ताई, संत का निंदक किन टिक न पाए, संत का निंदक मा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज के हीन, संत का निंदक दुखिया हर दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दुख में दुख, नान संत पावै तो उसका पी हुए मुख, संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसे का निमित, संत के दुखी को डान लागै, संत के दुखी को सब त्यागै, संत का दुखी मां अहंकारी, संत का दुखी सदा बेकारी, संत का दुखी जन्म में मरे, संत की दुख न सुख ते टरे, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नान संत पावै ता ले मिलाए, संत का दुखी अद बीच ते टूटे, संत का दुखी किते काज न पहुँचे, संत के दुखी को ध्यान परमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर ते थोता, जो सास बिना मृतक की लोता, संत के दुखी की जड़ किचनाहे, अपन बीजा पे ही खाहे, संत के दुखी कवर न रखन हार, नान संत पावै तां ले उबार, संत का दुखियों बिल लाए, जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, जो पाव किंदन नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटै अकेला, जो बुआड़ तिलके तुमाही दोहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पाया, नानक जो तिस भावै सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी न मरै न जीवाइए, संत के दुखी की पुजै न आसा, संत का दुखी उठ चलै निराशा, संत का दुख न दृष्ट है कोई, जैसा भाव है तैसा कोई हुए, पया कीर्तन मिटे कोई, नानक जाने सच्चा सोई, सब घट किसके हो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की स्तुत करो दिन रात, सहते आओ सास विरास, सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा कोथी, अपना केला करने हार, दूसर कौन कह विचार, जिसनु कृपा करे ते सब नाम दे, बड़भागी नानक जन से सलोक, तजो से आनक सुरजन हो, सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाय, अष्टपदी, मानुक की टेक वृति सब जान, देवन को एक है भगवान, जिस कहती है रह अघाय, बौर न तृष्णा ला गए आए, मारे रखे को आप, मानुक है किछ नाही हाथ,
किसका हुक्म भू सुख होए, किसका नाम रखंठ परोए। सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए, नानक विघ्न न लागे कोए। पुस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसनामृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो। नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन सह सब संग। चरण चलो मार गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानकू जल मथा। बड़भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करे विचार, से धनवंत गनी संसार। मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक एक पछाने, तुत की उसो जी जाने। नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिन्हें निरंजन जानिया। गुर प्रसाद अपन आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै। साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्यो हर जन रहत। अंतिन कीर्तन केवल बखियान, गृष्ट में सोई निर्वाण। एक ऊपर जी जन की आशा, तिसकी कटिया जम की भाषा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दुख। जिसको हर ब्रह्मंच त्यावे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे। जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक किसते डरे। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तब सब बुझिया। जब देखूं तब सब किच मूल, नानक सो सुख सोई असूल। न किस जन्मे न किस मरे, अपन चलता भी करे। आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट। आपे आप सगल में आप, अनेक युग तृष्ठाप उताप। अविनाशी नाही किच कांड, धारण तारयो ब्रह्मांड। अलख अपे पुरख प्रताप, आप जपाए था नानक जाप। जिन प्रभ जाता सो सोभावंत, सगल संसार उदरै तिन मंत। प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख विसारण। आपे मेले कृपाल, गुर का सब जपहि निहाल। उनकी सेवा सो ही लागे, जिसनु कृपा करह बड़ पागे। नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम करमान। जो किछ करे सुप्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग। सह सुभाए होवे सो होए, करने हार पछाने सोए। प्रभ का किया जन मीट लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिसते उपजे तिस माहे समाये, उए सुख निदान उन्हों बने आए। आपस को आप दिनु मानु, नानक प्रभ जने को जानु। सलोक सर्व कला परपूर, प्रभु बिरथा जानन हार। जाके सिमरन उदरी है, नानक तिस बलिहार उष्टवदी। टूटी गाडन हार गोपालु, सर्व जी आया पे प्रतपालु। सगल की चिंता जिस मन माहे, तिस्ते बिरता कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभ आपे आप। आपन किया कछु न होए, जेसो प्राणी लोचै कोए। तिस बिना ही तेरे किछ काम, गत नानक जपे कर नाम। रूपवंत होए नाही मोह है, प्रभ की जोत सगल घट सो है। तनवंता होए क्या को गर्व है, जा सब किस तिसका दिया दर्व है। अत सूरा जे को कहावे, प्रभ की कला बिना कहता वै। जे को हुए वह दातार, किस देन हार जाने गावार। जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग, नानक सो जन सदा अरोग। जो मंदर को थामे थम्मन, त्यों गुर का शब्द मने अस्थम्मन। जो पाखा नाव चढ़ करे, प्राणी गुर चरण लगत निस्तरे। जो अंधकार दीपक प्रगाश, गुर दर्शन देख मन होए बिगास। जो माह ध्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे। तिन संतन की बाँचो तूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूर काहे बिल लाइय, पूर्व लिखे का लिखिया पाइय। दुख सुख प्रभ देवनहार, अवर त्याग तू तिसै चितार। जो कछ करे सोई सुख मान, भूला काहे फिरे अजान। कौन बसताही तेरे संग, लपट रहे रस लोभी पतंग।
राम नाम जप हृदय माहे, नानक पत चेती कर जाहे। जिस वक्कर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। तज अभिमान लेहु मन मूल, राम नाम हृदय मह तूल। लाद खेप संतै संचाल, अवर त्याग विखिया जंजाल। धन धन कह सब कोए, मुखु जिल हर दर गह सोए। हुआ पार विरला वापार है, नानक ताकै सद बलिहार है। चरण साध के तोय तोय पियो, अर्प साध को अपना जियो। साध की तूर करो इसनान, साध ऊपर जाइए कुर्बान। साध सेवा वडभागी पाइए, साध संग हर कीर्तन गाइए। अनिक बिगंते साधु राखै, हर गुण गाय अमृत रसाखै। ओट गही संतै दर आया, सर्व सुख नानक ते पाया। मृतक को जीवा लनहार, भूखे को देवत आधारु। सर्व निदान जाके दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लेना पाहे। सब किस तिसका करने जोग, तिस बिन दूसर हुआ न होग। जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब ते ऊच निर्मल करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सूजन निर्मल थिया। जा कै मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवै हर प्रचीत। भगत भगत सुनिए त्यो लोए, जा कै हृदय को हुए। सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सत मुख कहत। सची दृढ़ साचा आकार, सच वर्तै साचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। श्लोक रूप न रेख न रंग किच, त्रय गुण ते प्रभ भिन्न। तिसह बुझाए नानका, जिस हो वैसु प्रसन्न अष्ट प्रदीप। अविनाशी प्रभ मन में राख, मानुकी तू प्रीत आग। तिसते परै नाही किच कोए, सर्व निरंतर इको सोए। आपे बिना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निदान ब्याल बख्संद। सा तेरे की चरनी पाओ, नानक है मने हो अनुराओ। मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग। हरन भरन जाका नेत्र फूर, तिसका मंत्र न जानै होर। अनद रू मंगल सद जाकै, सर्व थोक सुनिए करता कै। राज मैं राज, जोग मैं जोगी। तप मैं तपीसर, गृष्ट मैं भोगी। त्याए त्याए भगतै सुख पाया, नानक तिस पुर का किने अंत न पाया। जा की लीला की मितनाही, सगल देव हारे अवगाहे। पिता का जन्म के जाने पूत, सगल पुरोही अपने सूत। सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे, जनदास नाम त्या वैसे। त्यो गुण मैं जाको परमाए, जन्म रह फिर आवै जाए। ऊच नीच इसके स्थान, जैसा जनावै तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना भेख करै एक रंग। नाना बिद किन्नु विस्तार, प्रभ विनाशी एकंकार। नाना चलत करे किन माहे, कूरे हो पूर्ण सब ठाई। नाना बिद कर बणत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सब घट तिसके सब तिसके ठाऊ, जप जप जीवै नानक हर नाऊ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान। नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगल आकार। नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संगुदरे सुन श्रवण। कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए। रूप सत जा का सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान। करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरख समाहि समानी। सत कर्म जा की रचना, सत मूल सत सत उत्पत। सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली। सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नान गुर ते पाई। सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जा कर हृदय प्रवेश। सत निरत बूझै जे कोए, नाम जपता की गत होए। आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत। जिसकी सृष्टि करने हार, अवर्ण भूत कर्त विचार। करते की मित न जाने किया,
नानक जो तिस भावै सो वरतिया, बिस्मन बिस्म भय बिस्मा, जिन बूझिया तिसाया स्वाद, प्रभ कै रंग राच जन रहे, गुर कै बचन पदार्थ लहे, ओए दाते दुख काट नहार, जा कै संग तरै संसार, जन का सेवक सोवड भागी, जन कै संग एक लिव लागी। गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै, श्लोक आद सच जुगाद सच, है पे सच नानक होसी पे सच, अष्टपदी चरण सत सत प्रसनहार, पूजा सत सत सेवतार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत्यावनहार, आप सत सत सबधारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभक्ता, सुरत सत सत जस जसुनता, सुरत सत सत जस सुनता, बुझनहार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत स्वरूप हृदय जिन मानिया, करण करावन तिन मूल पछानिया, जा कर हृदय विश्वास प्रवे आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, पै ते निर्भउ होए बसाना, जिस ते उपजिया तिस माहे समाना, बस्त माहिले बस्त गडाई, ताको भिन्न न कहना जाई, बूजै बूजन हार विवेक, नारायण मिले नानक एक, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जानै संग, प्रभु का सेवक नाम कै रंग, सेवक को प्रभ पालन हारा, सेवक की राखै निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभ धारै, नानक सो सेवक साथ साथ सुमारै, अपने जन का परदा ढाकै, अपने सेवक की सर पर राखै, अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपत रखै, ताकि गत मित कोई न लाखै, प्रभ के सेवक कौ को न पहुंचै, प्रभ के सेवक उचते उचे, जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दा दिस प्रगटाया, नीकी कीरी मैं कल रखै, भस्म कर लश्कर कोट लाखै, जिसका सास न काढ़ता, पूता को राखत दिख रहात, मानस जतन करत वफात, तिसके करत वृथे जात, मार न राखै वरण कोए, सर्व जिया का रख सोए, काहे सोच करै रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलक विडानी, बारंबार बार प्रभ जपियै, पियम मृत्यु मन तंत्र पियै, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किच अवर नाही दृष्टाया, नाम धन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग, नाम रस जो जन त्रिपतानी, मंत्र नाम मैं नाम समानी, उठत बैठत सोवत नाम कौ नानक जन कै सदकाम, बोलो जसे पा दिन रात, प्रभ अपने जन की नीदात, करै भगता तुम कै चाई, प्रभ अपने शिव रह समाये, जो हुआ होत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पहचाने, तिसकी महिमा कौन बखानू, तिसका गुण कह एक न जानू, आठ पैर प्रभ सह हजूरे, कहु नानक से जन पूरे, मन मेरे तिनकी उटले, मन तने अपना तिन जन देहे, जिन जने अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर सब पाप मिटावे, अवर सियान सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा, श्लोक सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाव, तिसकै संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ अष्टपदी, सतगुर सिक्की करै प्रतपाल, सेवक को गुर सदा दयाल, सिक्की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख बिकार ते हटै, सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वड भागी, सतगुर सिख का अल्त पल सुवारै, नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमारै, गुर कै ग्रह सेवक जो रहै, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस को कर कछ न जनावै, हर हर नाम हृदय सत्यावै, मन बेचै सतगुर कै पास, तिस सेवक के कार्य रास, सेवा करत हुए ने कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिसाप करे,
नानक सो सेवक गुर कीमत ले, बीस बिस्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनिक बार गुर को बल जाओ, सर्व निदान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म मह जन जन मह पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ परम, सहब सियान को लया न जाइए, नानक ऐसा गुरु बड़ भागी पाई है, सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत, पेटत संग्राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दर गै गवे, सुन कर बचन करन आगाने, मन संतोख आत्म पति आने, पूरा गुरु क्यों जा का मंत्र, अमृत पेख हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भाव है तिस लय मिलाए, जे बाए कुछ तथा नेक, सतगुर पूर्ण विवेक, काहू बोलना पहुंचत प्राणी, अगम गोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वय सुखदाई, ताकी कीमत किन्ह न पाई, अनिक भगत बंधन नित कर है, चरण कमल हृदय सिमरह, सद बलिहारी सतगुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, वारस पावे जन कोय, अमृत पीवे अमृत सोय, उस पुर का नाही कदे विनाश, जा कै मन प्रगटे गुणतासु, आठ पैर हर का नाम ले, सच पदे सेवक को दे, वो माया कै संग न लेप, मन में रखे हर हर एक, अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परमो दुख तैते नासे, तपत माए ठाड वरताई, अनंत भया दुख नाटे पाई, जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेशे, पौ चुका निर्भव हो बसे, सगल ब्याद मन ते कह नसे, जिसका सातिन कृपा धारी, सासन जपना मुरारी, चित पाई चुके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन, निर्गुण आप सरगुण पियो ही, कला धार जिन सगली मोही, अपने चित प्रभाव बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिंदु जाना ही कोई, सर्व अंतरे को सोए, ओत पोत्र व्या रूप रंग, भय प्रगा सात कह संग, रच रचनाए अपनी कल धारी, अनिक बार नानक बलिहारी, श्लोक साथ न चाले बिन भजन, दिखिया सगली चार, हर हर नाम कभावना, नानक धन सारस्तपदी, संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, और उपाव संबीत विसारो, चरण कमल रिद में उतारो, करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हर वत, तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आसरा को मन वाही, सर्व रोग नानक मिट जाहे, जिस तन को चार कुंठ उठता वै, सो तन हर सेवा ते पावै, जिस सुख को नित बाचै मीत, सो सुख साधु संग प्रीत, जिस शोभा को करै भली करनी, सा शोभा भज हर की सरणी, अनिक पावी रोग न जाए, रोग मिटै रब कद लाए, सर्व निदान मै हर नाम निदान, जप नानक दरगै परवान, मन प्रबोधो हर कै नाए, दिस्तावता बैठाए, ता को बिघन लागे कोई, जा कर दे बसै हर सोए, कलता ती ठंडा हर नाउ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पौ बिन सह पूर्ण हो आसु, भगत पाया तुम प्रगास, तित कर जाए बसै बनासी, कहो नानक काटी जम फासी, तत विचार कह जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा, आवा गवन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव, रत्न जन्म का हुए उदार, हर हर सिमर प्राण आधार, अनिक उपावना छूटन हारे, सिमृत शास्त्र भेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन बंचत नानक बल पाए, संग न चाल स्थिर है तना, तू क्या लपटावै मूर्ख मना, सुत मीर कुटम्बर बनता, इनते कहो तुम कवन सनाता, राज रंग माया विस्तार, इनते कहो कवन छुटकार, असहस्ती रथ सवारी, झूठा डंप झूठ पासारी, जिन दिए तिस बुझे न बेगाना, ना बिसार नानक पछताना, गुर कीमत तू लेहे याने, भगत बिना बहु डूबे सियाने, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीर, चरण कमल राखो मन माही, जन्म जन्म के किल विख जाहे, आप जपो अवरा नाम जपावो, सुनत कैत रहत गत पाओ, सार पूछत हर को नाओ, सह सुभाय नान गुण गाओ, गुण गाव तेरे उत्तर समैलो, बिन सुजाय हम मैं बिख फैलो, हुए चिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास सर नाम संभाल, छाट सियान सगली मना, साध संग पावै सच तना, हर पूंजी संच करो बिहार, यहां सुख दर गै जयकार, सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाकै मस्तक लेख,
एको जाप एको सालाहि एक सिमर एको मन आहि कसके गुण गाओ अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक एक हरिया पूर्ण पूरे प्रव्याप अनेक विस्तार एक दे पय कराद प्राचित गए मंथन अंतर एक प्रवृत्ता गुरु प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया पर तो शरणाय नानक की प्रभेन्ती अपनी भक्ति लाय अष्टपति जाचक जन जाचय प्रवदान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करू प्रभ की नित नीति को टेको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट मां सुख हुए हरस पावे बिरला कोई जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सो भार भरे प्रेम रस रंग उपजय चाव साध कै संग परे शरणान सब त्याग अंतर प्रकाशन दिल विलाग बटभागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेव की मन सपूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होए दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुख जन भया जन मरण दुख भ्रम गया छपुनी श्रद्धा सपूरी रव रया सत्संग हजूरी जिसका साथिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल न पाने सो क्यों बिसरै जे किया जाने सो क्यों बिसरै जिन सब किस दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अग्न में राखै गुरु प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिकते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गाढ़ै गुरु पूरै तथे है बुझाया प्रभु अपना नानक जन ध्याया साजन संत करो ए काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो हवरै नाम जपावो भगत पाए तरिय संसार बिन भक्ति तन होसी चार सर्व कल्याण सुख निद नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का होत नाश नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाहो मन तने अंतर ही सुहाओ नेत्रोपेक दर सुख होए मन भिक्षा सा चरण धोए भग जना कै मंत्र रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजै कर माया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि कही न जाए नानक रिया सर्व सुमाए प्रभ बख्शन दीन दयाल भगत वचन सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आद गुरु कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो हुए पनीत भगत पायला वह मन हित हम निर्गुण यार नीचे जाना नु तुमरी शरण पुरुख भगवान सर बैकुंड मुक्त मुख पाए निम करके गुण गाए अनिक राज भोग बटे आई हर के नाम की कथा मन पाई वो भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी सो बातन वंत हृदय बसे पूर्ण गुरु मंत्र सासंग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास लो सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानक आया पे ही फिर जाप अष्टपदी जब कार कछ न दृष्टिता पापुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकुमात जब इसका वर्ण चिन्ह जापत तब हर सो कौ किसे व्यापत जब अपने आप अपार ब्रह्म तम्बू का सोवत परमु अपन खीला वर्ती जाना न करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त को किसको गनी जब एक कह रगम पार तब नरक सुर को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तरह तब कवन निडार कवन कत डरै अपन चलताप करने हार नानक ठाकुर अगम पार अबनासी सुखा पनासन तय जन्म मरण को कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो कि सोए जब विगत गोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किच पूछत लिखा जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपना पापी अचर जा नानक अपन रूप पापी पर जा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तय बिन मैल कहो क्या तूता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छिद्र लगत को कीस जय जो स्वरूपी जो समावे तय किसे भूख कवन तृप्तावै करन करावन करने हार नानक करते का नाहि सुमार जब अपनी शुभ अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कलाया पै परवीन तय वेद कतिब का कुचीन
जब अपना पापुर धारे तो सगन अपसगन कहा विचार है। जय अपन ऊचापन आप नीरा ते कौन ठाकुर कौन कही है चीरा बिस्मन बिस्मर ही बिस्माद नानक अपनी गत जानू आप जय छल चीद पीर समाया वहां किसे व्यापत माया आपस को आप है आदेश त्यो गुण का ना ही प्रवेश जय कहे एक भगवंता ते कौन चिंत किस लागे चिंता जय अपन आप पतियारा ते कौन कते कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊच ते ऊचा नानक आपस को आप पहुंचा जय प्रचु प्रपंचकार त्यो गुण में किन्नु विस्तार पाप कुंते पई कहावत को नर को सुर बंचावत आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बखियान अपन की लाभ कर दिखे खेल संकुचे तो नानक कह जय विगत भगत है आप जय पसर पासार संत प्रताप दू पाकाया पितनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपै कौत करे अनंत चूज आपै रस भूगन निर्जोग जिस भावे तिस अपना इलावे जिस भावे तिस खेल खिलावे

पाया, पूरे के गुण गाओ अष्टपदी, पूरे गुरु का सुनो उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर फेख, साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतर चिंद, आस अनित त्यागो तरंग, संत जना की तूर मन मंग, आप छोड़ बेनती करहु, साथ संगगन सागर तरहु, हर तन के पर ले हो भंडार, नानु गुरु पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद, नरक निवार उदार हो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो, चित चितवो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार, उत्तम श्लोक साध के वचन अमलीक लाल रतन, सुनत कमावत होत उदार, आप करै लोक निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग, जय जय शब्द अनाहत वाजै, सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजै, प्रगटे गोपाल महांत कै माथे, नानक उतरे तिन कै साथे, शरण जोग सुन सरणी आए, कर कृपा प्रभा मिलाए, मिट गए बैर भय सबरी, अमृत नाम सत्संग लैन, सुप्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण हुई सेव की सेव, आल जंजाल विकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रवतारी, नानक निभि खेप हमारी, प्रभ की उस्तद करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सोहोत निदान, सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब त्यूच पाए स्थान, बहुर न होवे आवन जान, हर धन काट चले जन सोए, नानक जिसै प्राप्त होए, खेम शांत रिद नवनिद, बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध, विद्या तप योग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कह मद सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत् का बेता, समदर्शी एक दृष्टिता, ए फल तिस जन कै मुख भनी,

सुखमनी सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानके गुण नाम सुखमनी सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा।

ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੇ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪਵਾਈਐ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹੋਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵੇਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਤੋਟ ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇਪਰਵਾਹੋ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖੈ ਮੰਗਹਿ ਦੇਹ ਦੇਹ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫਿਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੋਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੂਖ ਦੁਆਰ ਨਾਨਕ ਈਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨੇ ਧਾਨ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ ਬੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ ਜੇਤੀ ਸਿਰਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕਹਿ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗਲੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਵਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕਿ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ ਸੁਣਾ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਾ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣੈ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣੈ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ ਸੁਣੈ ਮੁਖ ਸਾਲਾ ਹਣਮੰਦ
सुना है जोग जुग तो तन भेद सुना है शासत सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास सुना है दुख पाप का नास सुना है सत संतोख ज्ञान सुना है अठ सठ का इशनान सुना है पढ़ पढ़ पावे मान सुना है लागे सहज त्यान नानक भगतां सदा विगास सुना है दुख पाप का नास सुना है सारा गुणा की गाह सुना है सेख पीर पातशाह सुना है अंधे पावे राह सुना है हाथ होवे असगाह नानक भगतां सदा विगास सुना है दुख पाप का नास मन्ने की गत कही न जाए जे को कहे पिछे पछुताए कागद कलम न लिखण हार मन्ने का बह करण विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मनै सुरत होवै मन बुद्ध मनै सगल पवन की सुध मनै मोहे चोटा ना खाए मनै जम कह साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मनै मार्ग ठाक न पाए मनै पत स्यों परगट जाए मनै मग न चले पंथ मनै धर्म से ती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मनै पावह मोख द्वार मनै परवार साधार मनै तरह तारी गुर सिख मनै नानक पवै ना भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंचे पाव है दरगह मान पंचै सो है दर राजान पंचा का गुर एक त्यान जे को कह करै विचार करते कह करण नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझा है होवे सचियार तबले उपर केता पार धरती होर पर होर तिसते पार तले कवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान सवाले हो रूप केती दात जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तिसते होए लख दरियाओ कुदरत कवण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पख सार असंख मोन लिव लाए पार कुदरत कवण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंधकोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पाखो खाहे असंख निंदक सिर कर है पार नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख काहे सिर पार हुए अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन ए लिखे तिस सिर नाहे जिव फुरमाए तिव तिव पाहे जेता कीता तेता नाओ विण नावै नाही को थाओ
कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। पर यह हाथ पैर तान देह, पानी धोता है उतर सोखे, मूत पलिती कपड़ होए, दे साबुन लइए ओह धोए। पर यह मत पापा कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग, पुन्नी पापी आखण नाहि, कर कर करना लिख लै जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवह जाहो। तीरथ तप दया दत दान, जे को पावै तिल का मान, सुनया मन्या मन कीता पाओ, अंतरगत तीरथ मल नाओ, सब गुण तेरे मैं नाही कोए, विण गुण कीते भगत ना होए। स्वस्थ आथ बाणी ब्रह्माओ, सत सुहाण सदा मन चाओ, कवण सो वेला वखत कवण, कवण थित कवण वार, कवण से रुति माह कवण, जित हुआ आकार। वेल न पाया पंडती, जे होवै लेख पुराण, वखत न पायो का दिया, जे लिखन लेख पुराण। थित वार ना जोगी जाने, रुत माह ना कोई, जा करता सिर ठीको साजे, आपे जाने सोई। केव कर आखा केव सालाही, क्यों वरनी केव जाना, नानक आखण सब को आखै, एक दू एक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जाका होवै, नानक जे को आपौ जाणै, अगै गया ना सो है। पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओड़क ओड़क पाल थके, वेद कहन एक बात। सहस अठारह कहन कतेबा, असलो एक तात, लिखा होए ता लिखी है, लिखा होए विनाश, नानक वड्डा आखी है, आपे जाने आप। सलाही सलाही एति सुरत न पाईया, नदियां अतवाह पवें, समुंद न जानी है, समुंद साह सुल्तान, गिरहा सेती माल तन, कीड़ी तुल न होवनी, जे तिस मन हो ना विसरा है। अंत ना सिफती कहन ना अंत, अंत ना करण देण ना अंत, अंत ना वेखण सुनण ना अंत, अंत ना जापै क्या मन मंत, अंत ना जापै कीता आकार, अंत ना जापै पारावार, अंत कारण किते बिल लाहे, ताके अंत ना पाए जाहे। एहो अंत न जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊचे ऊपर ऊंचा नाओ, एवड ऊंचा होवै कोए, तिस ऊंचे कौ जाने सोए। जेवड आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए, किते मंगै जोद अपार, कितिया गणत नहीं विचार, किते खप टुट हे वेकार, किते लै लै मुकर पाहे, किते मूरख खाही खाहे, कितिया दुख भूख सद मार, ए पे दात तेरी दातार, बंद खलासी भाणै होए, होर आख ना सकै कोए, जे को खाएक आखण पाए, ओह जाने जेतिया मोहे खाए, आपे जाने आपे दे, आखै है से पे के ही के, जिसनु बख्शे सिफत सलाह, नानक पात साही पात साह। अमुल गुण अमुल वापार, अमुल वापारिये अमुल भंडार, अमुल आवै है अमुल लै जाहे, अमुल पाए अमुला समाहे, अमुल धर्म अमुल दीबान, अमुल तुल अमुल परवान, अमुल बखसीस अमुल निशान, अमुल करम अमुल फुरमान। अमुलो अमुल आखिया न जाए, आख आख रहे लिवलाए, आख है वेद पाठ पुराण, आख है पढ़े करह वख्याण, आख है ब्रह्मे आख है इंद, आख है गोपी तै गोविंद, आख है ईश्वर आख है सिद्ध, आख है किते किते बुद्ध, आख है दानव आख है देव, आख है सुर नर मुन जन सेव, किते आख है आखण पाहे, किते कह कह उठ उठ जाहे,
एते कीते होर करे ता आख ना सक है केई के। जे वड भावै ते वड होए, नानक जाणै साचा सोए। जे को आखै बोल विगाड़, ता लिखिए सिर गावारा गावार। सो दर केहा सो कर केहा, जित बह सर्ब संभाले। वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावण हारे। केते राग परि स्यों कहियन, केते गावण हारे। गावै तुहनो पौण पाणी बै संतर, गावै राजा धर्म दुआरे। गावै चित गुपत लिख जाण, लिख लिख धर्म विचारे। गावै ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सुवारे। गावह इंद इंदा सुन बैठे देवत्यां दर नाले। गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे। गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले। गावह मोहनियां मन मोहन सुरगा मश पायाले। गावन रतन उपाए तेरे आठ साठ तीरथ नाले। गावै जोद महाबल सूरा गावै खाणी चारे। गावै खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे। सेई तुदनो गावै जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा साच साहिब साचा साची नाई। है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई। कर कर वेखै कीता आपना जिव तिस दी वडियाई। जो तिस भावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई। सो पात साहो साहा पात साहेब नानक रहन रजाई। मुंदा संतोख सरम पात झोली ध्यान की करै बेभूत। खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत। आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत। आदेश तिसाय आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद। आप नाथ नाथी सद जाकी रिद सिद्ध अवरा साद। संजोग विजोग दुए कार चलावै लिखे आवह भाग। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। एका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवान। एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीबाण। जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान। ओ वेखै ऊना नदर ना आवै बहुता एहो वेडाण। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार। कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। एक दूजी बौ लख हो है लख हो वह लख वीस। लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश। ए तराहे पत पवड़िया चढ़िए हुए इकीस। सुन गला आकाश की कीटा आई रीस। नानक नगरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस। आखण जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगण देन ना जोर। जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राजमाल मन सोर। जोर ना सुरते ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार। जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती थिती वार पवन पाणी अग्नि पाताल। तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत। करमे करमे होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथै सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान।
कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापै जाए। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। केते पवन पाणी वैसंत्र, केते कान महेश। केते बरमे घाट घड़ीऐ रूप रंग के वेस। केतियां कर्म भूमि मेर, केते केते तू उपदेश। केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश। केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेस। केते देव दानव मुन, केते केते रतन समुंद। केतिया खाणी, केतिया बाणी, केते पात निरिंद। केतिया सुरती सेवक, केते नानक अंत ना अंत। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कूड आनंद। सर्म खंड की बाणी रूप, तिथै घाड़त घड़ियै बहुत अनूप। ताकियां गल्लां कथियां न जाहे, जे को कहै पिछै पशुताए। तिथै घड़ियै सूरत मत मान बुद्ध। तिथै घड़ियै सुरां सिद्धां की सुध। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर ना कोई होर। तिथै जोद महाबल सूर, तिन मैं राम रहया भरपूर। तिथै सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप ना कथने जाहे। ना उहे मरह ना ठागे जाहे, जिन कहे राम वसै मन माहे। तिथै भगत वसै के लो, करै आनंद सच्चा मन सोए। सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै ता अंत ना अंत। तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुकम तिवै तिवकार। वेखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। जत पहारा धीरज सुनियार, आहरण मत वेद हथियार। पाओ खला अगन तप ताओ, भांडा पाओ अमृत तित ढाल। घड़ीऐ शब्द सची टकसाल, जिन कौ नदर करम तिनकार। नानक नदरी नदर निहाल। सलोक पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत दिवस रात दोए। दाई दाया खेलै सगल जगत, चंगियाईया बुरियाईया वाचै धर्म हदूर। कर्मी आपो अपनी।

ਲਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਛੰਦ ਤਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਿਹੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਿਹ ਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਣ ਸਾਹਿ ਸਹਾਣ ਗਣ ਜੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ ਤਵਾ ਸਰਬਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰ ਕ੍ਰਿਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਕਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਧਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਤਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਟਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਸ਼ੇਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਰੇ ਨਮਸਤੰ ਸੋ ਏਕੈ ਨਮਸਤੰ ਅਨੇਕੈ ਨਮਸਤੰ ਅਪੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਜੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਘਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰ ਅਸੋਕੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਤਾਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਥਾਪੇ ਨਮਸਤੰ ਤਿਰਮਾਨੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਤਿਰਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਪ੍ਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਸਜੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਮੇ ਨਮਸਤਸਤਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਜਲਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਬੇ ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਬੇ ਅਦੇਸੰ ਅਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭਾਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਯਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ ਨਮਸਤੰ ਅਪੇਵੈ ਨਮਸਤੰ ਅਜਨਮੇ ਨਮਸਤੰ ਸੁਬਨਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਨੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੌਨੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੰਗੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦਯਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਰਨੇ ਨਮਸਤੰ ਅਮਰਨੇ ਨਮਸਤੰ ਜਰਾਰੰ ਨਮਸਤੰ ਕਿਰਤਾਰੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਧੰਦੇ ਨਮੋ ਸਤ ਅਬੰਦੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਬਾਕੇ ਨਮਸਤੰ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰ ਮਹੰਤੇ ਨਮਸਤਸਤ ਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਯਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਅਪੂ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਪੇਖ ਹੈ ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ ਅਪੇ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਪੀਤ ਹੈ ਤਿਰਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤਿਰਵਰਗ ਹੈ ਅਸਰਗ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਅਜਨਮ ਹੈ ਅਬਰਨ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਪਰਨ ਹੈ ਅਗੰਜ ਹੈ ਅਪੰਜ ਹੈ ਅਚੂਜ ਹੈ ਅਝੰਜ ਹੈ ਅਮੀਕ ਹੈ ਰਫੀਕ ਹੈ ਅਤੰਤ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ ਅਸੂਜ ਹੈ ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ ਅਲਾਹ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਿਰਸਰੀਕ ਹੈ ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗਮ ਹੈ ਅਜਮ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਅਲੋਕ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਭਰਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਪੀਤ ਹੈ ਅਬਾਹ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ ਅਮਾਨ ਹੈ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸਰਬਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਪੇਖੀ ਅਪੇਵੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਹੁਣੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਨਰਸੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ
नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृते, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे, प्रपंगी प्रमाथे समस्ती विभूते, कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजवेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगवेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजवेश्वरं परम वृद्धे, नमो शास्त्र पाणे, नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता, अपेक्षी अपरमी अभोगी अपुगते, नमो जोग जोगवेश्वरं परम जुगते, नमो नेत नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवेशो धर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साहं, नमो भूप भूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तं ईशनानं, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्त निवासी, सदा सिद्ध धा बुद्ध दा बिरद करता, अदु उर्द अर्धं अघं ओग हर्ता, परं परं परमेश्वरं पुरुषपालं, सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं, अशेदी अपेदी अनामं अकामं, समस्त उपराजी समस्तास्ततामं, तेरा जोर चाचरी शंद, जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं, प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेस हैं, पुजंग प्रयात शंद, अगादे अबादे आनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमाने समस्ती निधाने, नमस्वंग निरनाथे, नमस्वंग प्रमाथे, नमस्वंग अगंजे, नमस्वंग अपंजे, नमस्वंग अकाले, नमस्वंग अपाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो शाह शाहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो शोख शोखे, नमो सर्वरोगे, नमो सर्वभोगे, नमो सर्वजीतं, नमो सर्वपीतं, नमो सर्वज्ञानं, नमो परमतानं, नमो सर्वमंत्रं, नमो सर्वजंत्रं, नमो सर्वदृशं, नमो सर्वकृशं, नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे, कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी, सदा सर्वदा हृद सिद्धं निवासी, चरपट शांत त्वा प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अखल जोगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मं अलख कर्मं, सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता, सर्वं पाने सर्वं माने, सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं, सर्वं भुगता सर्वं जुगता, सर्वं देवं सर्वं पेवं, सर्वं काले सर्वं पाले, रुआड शांत त्वा प्रसाद, आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार, सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार, सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल, यत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रिसाल, नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख, आद पुरख उदार मूरत अजोन आद अशेक, देश और ना पेश जाकर रूप रेख न राग, यत्र तत्र दिशा विशा होय फैल्यो अनुराग, नाम काम बहीन पेख तताम हो नह जाहे, सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान तताहे, एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेल न अंत को फिर एक, देव पेव न जानही जेह वेद और कतेव, रूप रंग न जात पात सो जानही केह जेब, तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन, चक्र बकर फिर चतुर चक मानई पोर तीन, लोक चौदह के बिखय जग जाप ही जेह जाप, आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जेह थाप, परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार, सर्व विश्व रचियो स्वयंभव गडन पंजन हार, कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख अदेश, धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेस, अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम, गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम, आप रूप अमीक अन उसतत एक पुरख अवतूत, गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत, अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार, सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार,
ਸਰਬਗੰਤਾ ਸਰਬਹੰਤਾ ਸਰਬ ਤੇ ਅਨਭੇਖ ਸਰਬ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਜਾਣਹੀ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਪਰਮ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਜਾ ਕੈ ਨੇਤ ਭਾਖਤ ਨਿਤ ਕੋਟ ਸਿਮਰਤ ਪੁਰਾਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਆਵਹੀ ਵਹ ਚਿਤ ਮਧੁਭਾਰ ਛੰਦ ਤੁਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਣਗਨ ਉਦਾਰ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਆਸਨ ਅਪਹੰਗ ਉਪਮਾ ਅਨੰਗ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਸ ਦਿਨ ਅਨਾਸ ਆਜਾਨ ਬਾਹੁ ਸ਼ਾਹਾਨ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਪਾਨਾਨ ਪਹਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਇੰਦਰਾਨ ਇੰਦਰ ਬਾਲਾਨ ਬਾਲ ਰੰਕਾਨ ਰੰਕ ਕਾਲਾਨ ਕਾਲ ਅਨਭੂਤ ਅੰਗ ਆਪਾ ਅਪੰਗ ਗਤਮਿਤ ਅਪਾਰ ਗੁਣਗਨ ਉਦਾਰ ਗੁਣਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਿਰਭੈ ਨਿਕਾਮ ਅਤਦੁਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਮਿਤ ਗਤ ਅਖੰਡ ਅਲਿਸੈ ਕਰਮ ਅਦ੍ਰਿਸੈ ਧਰਮ ਸਰਭਾ ਪ੍ਰਣਾਢੈ ਅੰਡ ਅੰਡ ਬਾਢੈ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤੁਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਅਪਾਰੇ ਹਰਿਯੰ ਕਰਿਯੰ ਨਿਰਨਾਮੇ ਅਕਾਮੇ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਕਰਤਾ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਹਰਤਾ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਦਾਨੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਜਾਨੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਭਰਤੀ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਪਾਲੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਕਾਲੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਪਾਸੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਵਾਸੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਮਾਨਿਆ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਦਾਨਿਆ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਨਾ ਸਤ੍ਰੈ ਨਾ ਮਿੱਤ੍ਰੈ ਨਾ ਭਰਮੰ ਨਾ ਪਿੱਤ੍ਰੈ ਨਾ ਕਰਮੰ ਨਾ ਕਾਏ ਅਜਨਮੰ ਅਜਾਏ ਨਾ ਚਿੱਤ੍ਰੈ ਨਾ ਮਿੱਤ੍ਰੈ ਪਰੇ ਹੈ ਪਵਿੱਤ੍ਰੈ ਪ੍ਰਥੀਸੈ ਅਧੀਸੈ ਅਦ੍ਰਿਸੈ ਅਕ੍ਰਿਸੈ ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤੁਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਥ ਤੇ ਕਿ ਆਸ਼ੇ ਜ ਦੇ ਸਹਿ ਕੇ ਅਭੇਜ ਭੇਸੈ ਕੇ ਆ ਗੰਜ ਕਰਮੈ ਕੇ ਆ ਭੰਜ ਭਰਮੈ ਕੇ ਅਭੇਜ ਲੋਕੈ ਕੇ ਆਦਿਤ ਸੋ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਧੂਤ ਵਰਨੈ ਕੇ ਬਿਭੂਤ ਕਰਨੈ ਕੇ ਰਾਜੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਕੇ ਧਰਮੰ ਤੁਜਾ ਹੈ ਕੇ ਆਸੂਕ ਵਰਨੈ ਕੇ ਸਰਬਾ ਅਭਰਨੈ ਕਿ ਜਗਤੰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕੇ ਸ਼ਤਰੰ ਸ਼ਤਰੀ ਹੈ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮੰ ਸਰੂਪੇ ਕੇ ਅਨਭਾਉ ਅਨੂਪੈ ਕੇ ਆਦ ਅਦੇਵ ਹੈ ਕੇ ਆਪ ਅਭੇਵ ਹੈ ਕੇ ਚਿਤਰੰ ਬਹੀਨੈ ਕੇ ਏਕੈ ਅਧੀਨੈ ਕੇ ਰੋਜੀ ਰਜਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਹੈ ਕੇ ਪਾਗ ਬੇਅਬ ਹੈ ਕੇ ਗੈਬੁਲ ਗੈਬ ਹੈ ਕੇ ਅਪੁਲ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹਨ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕੇ ਕਾਰਨ ਕੁਨਿੰਦ ਹੈ ਕੇ ਰੋਜੀ ਦਹਿੰਦ ਹੈ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਹੀਮ ਹੈ ਕੇ ਕਰਮੰ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬੰ ਕਲੀ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬੰ ਦਲੀ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨਿਆ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਦਾਨਿਆ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਗੌਨੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭਾਉਨੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭੇਸੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਰਾਜੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਸਾਜੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਦੀਨੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਲੀਨੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਜਾਹੂ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭਾਹੂ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭੇਸੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਕਾਲੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਪਾਲੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਹੰਤਾ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਗੰਤਾ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭੇਖੀ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭੇਖੀ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਕਾਜੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਰਾਜੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਸੋਖੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਪੋਖੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਪ੍ਰਾਣੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਪ੍ਰਾਣੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭੇਸੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨੈ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਧਾਨੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਜਾਪਿਐ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਥਾਪਿਐ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭਾਨੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਇੰਦ੍ਰੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਚੰਦ੍ਰੈ ਕੇ ਸਰਬੰ ਕਲੀਮੈ ਕੇ ਪਰਮੰ ਫਹੀਮੈ ਕੇ ਆਕਲ ਅਲਾਮੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮੈ ਕੇ ਹੁਸਨਲ ਵਜੂ ਹੈ ਤਮਾਮਲ ਰਜੂ ਹੈ ਹਮੇ ਸੁਲਸਲਾਮੈ ਸਲੀਖਤ ਮੁਦਾਮੈ ਗਨੀਮਲ ਸਿਕਸਤੈ ਗਰੀਬਲ ਪਰਸਤੈ ਬਿਲੰਦਲ ਮਕਾਨੈ ਜ਼ਮੀਨਲ ਜ਼ਮਾਨੈ ਤਮੀਜੁਲ ਤਮਾਮੈ ਰਜ਼ੂਅਲ ਨਿਧਾਨੈ ਹਰੀਫਲ ਅਜੀਮੈ ਰਜ਼ਾਇਕ ਯਕੀਨੈ ਅਨੇਕੁਲ ਤਰੰਗ ਹੈ ਅਭੇਦ ਹੈ ਅਭੰਗ ਹੈ ਅਜੀਜੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮੁਕਤ ਬਿਭੂਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸੁਜੁਗਤ ਸੁਦਾ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ ਸਮਸਤੂ ਪਰਾਜ ਹੈ ਸਦਾ ਸਰਬਸਾਜ ਹੈ ਸਮਸਤੂ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਦੈਵਲ ਅਕਾਮ ਹੈ ਨਿਰਬਾਧ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਗਾਦ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਓਵੰ ਆਦ ਰੂਪੇ ਅਨਾਦ ਸਰੂਪੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭਰਗੰ ਤ੍ਰਿਬਾਦੇ ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਦੇ ਸੁਭੰ ਸਰਬ ਭਾਗੇ ਸੁਸਰਬਾ ਅਨੁਰਾਗੇ ਤ੍ਰਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਸ਼ਿਜ ਹੈ ਅਸ਼ੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਿਉਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਸਦਾ ਹੈ ਵਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਯੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਦਾ ਹੈ ਵਿਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਅਨਉਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਯੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਅਭੰਗ ਹੈ ਅਨੰਗ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭਰਮ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਜੁਗਾਦ ਹੈ ਅਜੈ ਹੈ ਅਭੈ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਤੂਤ ਹੈ ਅਨਾਸ ਹੈ ਉਦਾਸ ਹੈ ਅਤੰਦ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਅਭਗਤ ਹੈ ਵਿਰਕਤ ਹੈ ਅਨਾਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਿਚਿੰਤ ਹੈ ਸੁਨਿੰਤ ਹੈ ਅਲਿਖ ਹੈ ਅਦਿਖ ਹੈ
अलेख हैं, अपेख हैं, अटा हैं, अगाह हैं, असंभ है, अगम्भ है, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चरपट शांत व प्रसाद, सर्वंहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंप्राणं सर्वंप्राणं सर्वंकर्मं सर्वंकर्मं सर्वंज्युक्ता सर्वंमुक्ता, रसावल शांत व प्रसाद, नमो नर्कनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते, प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते, अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे, न पोत्रय न पुत्रय न सत्रय न मित्रय न ताताय न माताय न जाताय न पाताय, नृसाकं सरीक हैं, अमितो अमीक हैं, सदैवं प्रभा हैं, अजय हैं, अजा हैं, भगवती शांतवा प्रसाद, के जाहर जहूर हैं, के हाजर हजूर हैं, हमेशुल सलाम हैं, समस्तुल कलाम हैं, के साहिब दिमाग हैं, के हुसनल चराग हैं, के कामल करीम हैं, के राजक रहीम हैं, के रोजी दहंद हैं, के राजक रहंद हैं, क्रीमुल कमाल हैं, के हुसनल जमाल हैं, गनीमुल खिराज हैं, ग्रीबुल निवाज हैं, हरीफुल शिकन हैं, हिरासुल फिकन हैं, कलंकं प्रणास हैं, समस्तुल निवास हैं, अगंजुल गनीम हैं, रजायक रहीम हैं, समस्तुल जुबा हैं, के साहिब किरा हैं, कि नरकं प्रणास हैं, बहस्तुल निवास हैं, कि सर्बुल गवन हैं, हमेशुल रवन हैं, तमामुल तमीज हैं, समस्तुल अजीज हैं, परं परम ईश हैं, समस्तुल अदीस हैं, अदेशुल अलेख हैं, हमेशुल अपेख हैं, जमीनल जमा हैं, अमीकुल इमा हैं, क्रीमुल कमाल हैं, कि जोरत जमाल हैं, कि अचलम प्रकाश है, कि अमितो सुबास है, कि अजब स्वरूप है, कि अमितो विभूत है, कि अमितो पसा है, कि आत्म प्रवाह है, कि अचलम अनंग है, कि अमितो अपंग है, मधुभार शांत त्वा प्रसाद, मुन मन प्रणाम, गुणगन मुदाम, अरबर अगंज, हर नर प्रपंज, अनगन प्रणाम, मुन मन सलाम, हर नर अखंड, भरनर अमंड, अनुभव अनास, मुनमन प्रकाश, गुणगन प्रणाम, जल थल मुदाम, आनशेज अंग, आसन अपंग, उपमा अपार, गतमित उदार, जल थल अमंड, दिस विस अपंड, जल थल महंत, दिस विस बेअंत, अनुभव अनास, कृत तर तुरास, अजान बाहु एक सदाहु, ओंकार आद, कथनी अनाद, खलखंड ख्याल, गुरबर अकाल, कर कर प्रणाम, चित चरण नाम, अन छिज गात, आजिजना बात, अन झंझ गात, अन रंज बात, अन टुट भंडार, अन ठट अपार, अडीठ धर्म, अत ठीठ कर्म, अणब्रण अनंत, दाता महंत, हर बोल मना शांत त्वा प्रसाद, करुणालय है, अरिकाल्य है, खल खंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व उबारण है, त्रित के तरण है, जाग के करण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वंग पर है, सर्वंग कर है, सर्व पास्य है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, विश्वम्बर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खलखंडस है, परते पर है, करुणा कर है, अजपा जप है, अथपा थप है, अकृताकृत है, अमृतामृत है, अमृतामृत है, करुणाकृत है, अकृताकृत है, तरणी त्रित है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृताकृत है, अमृतामृत है, अजबाकृत है, अमृतामृत है, नर नायक है, खालकायक है, विश्वम्ब्र है, करुणालय है, निरपनायक है, सर्वपायक है, भवभंजन है, अरिगंजन है, हरे प्रतापन है, जाप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ताकार है, हर्ता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्मवास है, जस के जस है, भुजंग प्रयात छंद, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संगताम संशांत रूपे, नमो परम ततंग अततम स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो ज्योत ज्योते, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादं विभूते, अलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, एक अश्री शांत,
अजय अलय अपय अभय अबू अजू अनास आकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अटा अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नृकामंग बेभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग बेभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेभूते गजायब गनी में हरियम करियम क्रीमल रहीमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते सुयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते सुयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगम बेभूते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवें त्व प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरियो कर जोग जति के सुर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा होते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पाउन के गौन कौ जात निवारे भारी पूजान के भूप पली बिद न्यावत सीस न जात बिचारी एते पय तो कहाँ पय पूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशान को बांजत टोल मृदंग नगारे गुंजित गूढ़ गजान के सुंदर हिंसक ही हाय राज हजारे भूत पवेख पवान के पूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के ताम सुधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जत तार सब सो विचार हजार देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है सुध सिपाहा दुरंत दुबाह सुसाज सना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीर मरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बटे बरियार अब चारे सार की तार पशैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गड़े गड़ान को तोड़न हार सुबात नहीं चकचार लवैया साहेब सिरे सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक देवैया दानव देव फने दिन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाड जैत तुन पापन के भव पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्र सवाय अवलोक जपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट इश नानक जादिक दान अनेक सुअंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर बेसन सचीपत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्रीपत के प्रस है पाग ते नर फिर न देह धरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बख ध्यान लगायो नाहत फिरियो लिए सात समुद्रन लोक गायो परलोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरयो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो
काहू लख्यो हर अवाची दिशा में काहू पशा को सीसने वायो को ऊ भूतान को पूजत है पाश।

दुख रोग संताप उतरे सुने सची बाणी। संत साजन पए सर से पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया।

जाति प्रभ आ गए अरदास। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाओ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नाओ निध आवै ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होवो जी सहाय। दसाही पातशाहियां दी जागदी जोत बाणी के बोहेथ चवर ताकत शत्र दे मार।

जुग जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दे राखे आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरधाम जिन्हां तों सिख पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी। हे निमाणियां दे माण सतगुरु, नेताणियां दे ताण सतगुरु, ने ओटियां दी ओट, ने आसरियां दे आसरा, सचे पिता धन सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, धन सतगुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह।

साहब एक तो जिन सच्चों सच बरताया जिन सतमाया सत्यो मिले सचवाया जिन के सचो साया मूर्ख सचन जाने मनमुखी जन्म गवाया दुनिया का है।

गुरु गृह तंत्र जामी सतगुरु तंत्र साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दरदी हाजिर पड़े हाँ बेअंत गुरसिख माई पाए लो आप जी बन गए सत्कार जो बेअंत माया बेटा कर दिया जिन सारण सिखी दान प्रसाद दान चन्ना कथा प्यार बख्शना खजाने प्रपुर करने सो आओ गुरु प्यारे साथ संगति कीर्तन दी इनिक सेवा प्राण करनी हुई पुला चुका दिखीमा करनी आओ अगले प्रोग्राम सरवण करी सिख पंथ दे विद्वान सत्कार योग ज्ञानी गुरमेल सिंह जी कनेडा टोरंटो वाले उन्होंने पासो अज दे श्री मुखाक दे विचार गुर इतिहास सिख इतिहास सरवण करिए दसो पुति प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: सत्संग जी बोलो जी।
1: वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी साहेब आज को दिपाजे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याय फिर अंकित कुरते अमरदास रामदास फिर सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमरो श्री हर आए श्री हर कृष्ण त्याग सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरया कर नौन गावे ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पातशाह के पितरात्मक रूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठ दर दर तैन तर के खालसा से बोलो जी। वाहेगुरु प्रभात आप जी के पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हटियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वाण छपया देख चलाई ते वाहे देख जिट किया तेना प्यार सत्यार की कमाई का ध्यान करके बोलो जी। वाहेगुरु जिन्ना सिंघा सिंघणिया धर्म है सीह दिते बंद बंद कटवाए कोपनिया लवाइया चरखड़िया से चढ़े आ रहे नजराए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां की धर्म नहीं आ रहा से किसी देखे सत्संग आया तिना भी कमाई का ध्यान करके बोलो जी। वाहेगुरु पंजा तख्तां सबद गुरुद्वारा का ध्यान करके बोलो जी। वाहेगुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु नाम चेता है चित आमण का सद का सब सुख हो है जहां जहां गुरु खालसा साहब सर चरियात देख ते की फतेह बिरत की पहज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। वाहेगुरु सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान शाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि यहां चंडे बुंगे जुग जुग हटा धर्म कह जयकार बोलो जी। वाहेगुरु सिखा दा मानी मामा तुजी मत पत के राखे आप वाहेगुरु गुरु की बनवाज पंथ सदा सहाय तार जी गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब गुर गुरुद्वारे गुरुधाम जी तो आदिया पंथ में छोड़िया गया है उन्होंने देखो दर्शन की दार से हाथ मार दान खालसा जी ने बख्शो ये न्योटियां ओट गुरु न्यासरिया दे आसरे गुरु तान तान गुरु तार दोए कर जोड़ करो अरदास तुझ भावे ताने रास हे गरीब नवाज जी आपने चरण कामना दरदास भेजी आपने बख्शिश की है अमृत वेले प्रकाश मानो संगतों दर्शन दर के हर उतार दियो बेअंत बाणियों के पाठ ऐस रागी संघ ने आपके चरणा जा सके आरत कितने कितने विद्वान भी ने कथा विचार की गरीब नवाज बख्शिश करो वो यहां भुला चुका माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी शोध के सचखंड पुराण गुरबाणी का भाव सारिया संगतों के हृदय में शांति की बाधा करो जी अगो तो शोध से पितरबाणी कहने वाले मुझे बख्शित करो कि आज इस खुशी में आप जी बख्शियां दाता पुत्र ग्राफ से देकर दरदार आप जी भोग लाओ शीर प्रसाद सा संगत रसना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जब बख्शित करो दतार जी दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखों का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शित करो जी ये गिर प्रभाज आपकी बख्शिश हो दार जी आपकी बख्शिया दातों जो लंगड़े तुट सवारी प्रवान करनी आपके चरणा सेवा कर रहे सारे टारी सिंह सिंगड़िया तंदुरुस्ती बख्शो टारी कला बख्शो सदा ही इस तरह अपने चरणा सेवा की भान मछली पालता करो कृपा करो दार अमृत वे तो लैके दाते आई हैं साफ संगतन आदि दर प्रवान करो घड़िया लेके लाओ संगतान दर के तिर पर पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी गिर प्रभाज कृपा करो खास सफल सेहत कौम एक तत्वाग पे आज बख्शी चाचे सत दो दार बख्शो चान जोड़ो करवाने प्यार के दार हार मैदान जवान हदे बख्शी पालता करो जी। गुरु गिर प्रभाज दूर राय कराने बैठी लाइव कथा की चरण कर रही है सारी संगत आज प्रवान घड़िए लेके लाओ सरदार आपने कृपा की संगत रुद बख्शे संगत आपके चरणा धनवाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहद ऑनलाइन गुरु कर गुरु घर सेवा सिंह दर संगत माया बेटा कारी चरना प्रवान करो बख्शर सब कमाइया सबल करो घर तो वाद दार साफ संगत शुभकामनावान समर्थ पूरी करो जी घर मेहनत करो सेवा प्रवान करो भुला चुका की माफी बख्शो वेद रुक नामे बख्शिश करके साफ संगत निहाल सदार अदित्य लड़ चल रहे लड़ी वार सहज पाठा की आरंभता वास्ते गरीब रिवाज सहज पाठ करने वास्ते आगा बख्शो शोते बच्चे सवाल निकालता करो रहा कार सुवार के चरना तुना दि बनाओ सही प्यारे मेरे दिन बना आपका नाम चेता आवा नानक नाम चढ़ी कला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह दोहरा आग्या भाई अकाल के तभी चलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे जो प्रभु को मिल बोझ है गोज शब्द में राज करेगा खालसा आकी रहे न कोई ख्वार हुए सा मिलेंगे बजे शरण जो वाहे गुरु नाम जहाज है जड़े से उतरे ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾ ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਗਲਗੀ ਸੋਹ ਹੈ।

तब लो भ्रमते फिरते बहुतायो। कल कोर समुंदर में बूढ़त थे, कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो।

फिर संकट जून गर्भ न आयो। जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो।

अन कत है न धावो सफल दर्शन गुर भेटी है मान मोह मिटावो सत संतोख दया धर्म सिगार बनावो सफल सुहा

जिस जन हुआ साथ संग तिस भेटै हर राया। एह प्रतीत गोविंद की जप हर सुख पाया। अनिक बाता

पतत पुनीत घणे करे ठाकुर बिरदाया मत भूलो मानुख जन माया फरमाया नानक।

सुख खसमर जाई चिंत देसा गणत तज जन हुकम पछाता नह बिनसै नह छोड़ जाए नानक।

रामचंद की लस्तिका। जिन मारिया रोग रहाओ गुरपुरा हर जापी है, नित कीचे भोग साध संगत कै वारने मिलया संजोग। जिस सिमरत सुख

निंदक मृतक हुए गए। तुम हो निचिंद रहाओ सगल मनोरथ प्रभ किए भेटे गुरुदेव। जय जयकार जगत में

सब हूँ तले तले सब ऊपर यह दृष्ट दृष्टाई अभिमान खोए खोए खोए खोई हाँ मोको सदगुरु मंत्र दृढ़ाई अतुल अतुल अतुल नह तुलिये भगत वच

सुनियत प्रभ तौ सगल उदारन, मोह मगन पतत संग प्राणी, ऐसे मन है विसारन रहाओ, संच बिखियाले ग्राहज कीनी, अमृत मन ते डारन, काम क्रोध

अवतरी है। सब नानक ब्रह्म पसारो सलोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाई मैनू जो की तोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाई आपे तरस पयोई।

राग एक संग पंच बरंगन संग अलापे अठो नंदन प्रथम राग पैरो वह करे संग पंच राग ने संग उचरे ही प्रथम पैरवी बिलावली पुनिया की गावे बंगले पुनिया असले की पही बारी।

संघ राग नहीं पाचो थापै गौण करी यर देव गंधारी गंधारी सिवती उचारी तनाश्री ए पाचो गाई माल राग को सकसंगलाई मारू मस्त अहमे वारा प्रबल जन।

तंदड़ा रोवण हार हुआ दंदार होवे मैं न धोवे सपन अंतर संसार हो जो बाजी कर पर मैं भूली छूट मुटी अहंकार हो आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाए नाम रते गुरपुरे राखे नानक सह सुभाए बड़ा हंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना ए जग झूठ पसारोवा सच्चा कर सचड़े सेवी है सच खरा सचिया रोवा कूड़ लग जाता है न पासी आगे लहने ठाऊ अंतर आओ न बैसो कही है जो सुन जाए कर काओ

मरण लिखाए मंडल में आए स्वर्गवासी माता बलदेव कौर शीना जी की याद में जुड़ बैठी परम सत्कार जो सत्संग जी हो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ते सी माता जी दे निमित्त श्री सहज पाठ दे पाठ ते कीर्तन, उस उपरंत अरदास ते हुक्मनामा जो सरदार परमजीत सिंह शीना ते सरदार गुरमीत सिंह शीना ते समूह शीना परिवार वालों सेवा करवाई गई सी, उन्होंने निमित्त गुरु कृपा करे विछड़ी रू नूं सदी विकाल लई अपने चरणां च वासा देवे ते पिछे परिवार नूं इस सदमा सहण दा बल बख्शे, परिवार अंदर सुख शांति बख्शे। साडी अरदास है ते आप समूह संगतां दा दोनों भरावां वालों सरदार परमजीत सिंह शीना ते सरदार गुरमीत सिंह शीना ते समूह शीना परिवार वालों आप समूह संगतां दा जो सवेर तों आ के सारे प्रोग्राम दे विच हाजरी भर के उन्हां दे नाल दुख समय साथ दिता, सब दा हार्दिक हार्दिक धन्नवाद। दूरों नेड़े आ के आप जी ने समा दिता ते हुण देग बरत रही आ, जिन्हां ने देग लै के नगर नहीं छकिया उन्हां नूं बेनती आ परिवार वालों कि लंगर छक के जाण की कृपा करनी जी, ते नाल चाह दा लंगर भी है लंगर वह भी छक के जाण की कृपा करनी। ते हुण इत्थे इस प्रोग्राम की समाप्ति हैगी आ ते राय परिवार के जो आए ने सारे संगतां उधरों उन्हां नूं बेनती है, उन्हां दा प्रोग्राम ठीक 2:30 बजे शुरू होण लगा इत्थे मेन हाल च जी, ते वो 3:30 बजे तक हैगा। 3:30 बजे फिर साडा होर प्रोग्राम हैगा, सो नाल बैक टू बैक प्रोग्राम चल रहे ने अज्ज। ते संगतां दा हार्दिक हार्दिक धन्नवाद जिहड़े बहुत सहयोग दे रहे ने सारे प्रोग्रामां दे विच, हर एक दा हार्दिक हार्दिक धन्नवाद निजी तौर ते, नाल प्रबंधकां दा भी कमेटी दा भी इत्थों दी दा सारिआं दा हार्दिक हार्दिक धन्नवाद जी। ते सो जिन्हां देख नहीं लई कृपा करके वो आवाज़ मार के देख लैण दी कृपा करन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।

प्रकार होवा, भोजन भाव ना ठंडा पानी ना कापड़ सिगारो, गल संगल सिर मारे उबो ना दी सह घर बारो, इब के राहे जमण नाही पछताने सिर पारो, बिन साचे को बेली नाही साचा एहो बीचारो, बाबा रोवह रवह सो जानी है मैल रोवै गुण सारे वा, रोवै माया मुठड़े धंधड़ा रोवन हारे वा, धंधा रोवै मैल न धोवै सुपनांतर संसारो, ज्यों बाजीगर भर मैं भूलै झूठ मुठी अहंकारो, आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाए, नाम रते गुर पूरा राखे नानक सहज सुभाए, वड हंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना, एहो जग झूठ पसारोवा, सच्चा घर सचड़ा सेविया सच खरा सचया रोवा, कूड़ लब जा थाए ना पासी अगै लह ना ठाओ, अंतर आओ ना बैसो कहिया ज्यों सुनै कर काओ, जमण मन वड्डा वे छोड़ा बिणसै जग सबाए, लब धंदा माया जागत भुलाया काल खड़ा रुआए, बाबा आव हो भाई हो गल मिल है मैल मिल देह आसीसा है, बाबा सचड़ा मेल ना चुके प्रीतम किया देह आसीसा है, आसीसा दे वो भगत करे वो मिलया का क्या मेलो, एक भूले नावो थेवो थावो गुर शब्दी सच खेलो, जम मार्ग नहीं जाना शब्द समाणा जुग जुग सच है वेसे, साजन सैन मिलो संजोगी गुर मिल खोले फासे।

नानक जुग जुग जान सजाना रोब है सच संभाले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। राम कली सत एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वशर त्यो लोहे जियो। गुर शब्द समावे अवर न जाने कोई जियो। अवरो न जाने शब्द गुर कै एक नाम ते आवे। प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे। आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया। जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया पाया। हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रपास जियो। सतगुर करे हर पह बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो। पैज रखो हर जने केरी हर देहो नाम निरंजनो। अंत चलदिया होए बेली जमदूत काल निखंजनो। सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो। हर धार कृपा सतगुर मिलाया तन तन कहा साबास जियो। मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरा हर पाणा आओ मैं पास जियो। हर पाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो। भगत सतगुर पुरख सोई जद हर प्रभ पाणा पावे। आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल में लावे। तुसी पुत भाई परिवार मेरा मन वेखो कर निरजास जियो। तुर लिखिया प्रमाणा फिरे नाही गुर जाए हर प्रभ पाज जियो। सतगुर भाणे आपणे बह परवार सदाया। मत मैं पिछे कोई रोब सी सो मैं मूल ना पाया। मित पैजै मित बिगसै जद मित की पैज पावे। तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पहनावे। सतगुरु प्रतख होंदा मैं राज आप टिकाया। सब सिख बंद पुत भाई रामदास पैरी पाया। अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करो निर्वाण जियो। केसो गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग गुर भावे। पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास छोटी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो। सतगुर पुरख जे बोलिया गुर सिखा मन ले रजाए जियो। मोहरी पुत सनमुख होया रामदास पैरी पाए जियो। सब पवे पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया। कोई कर बखीली निवै नाही फिर सतगुरु।

धन धन सतपुरख सतगुरु हमारा, जिस मिले हमको शांति आई। धन धन सतपुरख सतगुरु हमारा, जित मिले हम हर भगत पाई। धन धन हर भगत सत

धन धन हर ज्ञानी सतगुरु हमारा, जन वैरी मित्र हमको सब समृष्ट दिखाई। धन धन सतगुरु मित्र हमारा, जन हर नाम श्यो हमारी प्रीत बनाई। धन धन सतगुरु मित्र हमारा,

अष्टपति ब्रह्म ज्ञानी सदनर लेप जैसे जल में कमल लेप ब्रह्म ज्ञानी सदनर दुख जैसे सुर सर को शोक ब्रह्म ज्ञानी का दृढ़ समान जैसे राजरंग को लागत अल्पवान ब्रह्म ज्ञानी का तीर जे एक जो बासुधा को देखो चंदन ले ब्रह्म ज्ञानी का गुनाओ नानक जो पाव का सह सुभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मुक्ति निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी का मन हो प्रकाश जैसे तरु प्रे आकाश ब्रह्म ज्ञानी का मित्र सदृश समान ब्रह्म ज्ञानी का नहीं अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उचते ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सलगरी नाथ बस ब्रह्म ज्ञानी जीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर में आ ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पे आ ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि मत वर्षे ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुद्दा ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल ज्योता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी के प्रयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो महा ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी लेता बंधा ब्रह्म ज्ञानी का हो सो फला ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला

संग ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रसंग ब्रह्म ज्ञानी का नाम धार ब्रह्म ज्ञानी का नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सासे जात ब्रह्म ज्ञानी अम्ब त्याग ब्रह्म ज्ञानी के अन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के कर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सुख साई निवास नान ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता ब्रह्म ज्ञानी का हो या चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दृढ़ भागी पाइय ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइय ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहि ब्रह्म ज्ञानी का सकल मनवाहि ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी कुछ दादेश ब्रह्म ज्ञानी का कथन जाए दाखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नान ब्रह्म ज्ञानी कुछ दा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टा करता ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुग जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्व पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी

0: अपना भिक्षा नेत्र, साध की टहल संत संग हित, कर न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद भिक्षा पर हरे, मन की बास न मन ती टरे, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा परस, बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हुए नहीं कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बांछै, केवल भक्त कीर्तन संग्राचै, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरह नाम जपावै, नानक वैष्णु परमगत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म, साध संग पाप अमल खोवै, तिस भगवती की मातु तम होवै, भगवंत की टहल करै नितनीत, मन तन अर्पै बिसन प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नामा तुम है शुद्ध है, राम नाम सारस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो न आवै, वेद प्राण सिमरत बुझे मूल, सुखम है जाने असूल, चाहो वर्णा को देव उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चहो वर्णा में जपै कहु नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, साध संग पावे जन कोई, कर कृपा अंतर उतारे, पस प्रेत मुक्त पाथर को तारे, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कितना पाइये धर्म, नानक तिस मिले जिस लिख्या तुर कर्म, जिसका मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास, सातम राम तस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह भरवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सो जीप रह, सगल संगा तुम उदास, ऐसे जुगत नानक राम दास, प्रापी आज्ञा तुम हितावे, जीवन मुक्त सो कहावे, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी विख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वर्ताए साई जुगत, नानक कहो पुरख कहिए जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर राखे तैसा तिन नाओ, आपे करण करावण जोग, प्रभ पावाए सोई पन होग, पसरियो आप होए अनंत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता विनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पय निहाल, श्लोक उस्तत करह अनेक जन, अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रचि बहुविध अनक प्रकार, अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पे तीर्थवासी, कई कोट बन पर महोदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट भी सरहोते, कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कब काब विचार है, कई कोट नवतन नाम त्यावह, नानक करते कांत न पावे, कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्प को हिरे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट मायाश्रम माहे, कई कोट प्रदेश प्रमाहे, जित जित लाभ तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजी रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख निपजाए, कई कोट पौन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्यर सुनिखत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत धार है, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद प्राण समर्थ अर्थास, कई कोट कीर्तन समुद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चर जीवे, कई कोट गिरी में स्वर्ण थीवे, कई कोट जख के नर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच, सब ते नेरे सब हूते दूर, नानक आप लिप्त रहा भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मरे, कई कोट बहजोनी फिरे, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काले थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किछ प्रभ के हाथे, कई कोट पे बैरागी, राम नाम संग दिन लगलागी, कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म है पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिन को मिलो प्रभ विनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा तन तन, कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होए अवतार, कई जुगत की नो विस्तार, कई बार पसरू पासार, सदा सदा एक एकंकार, कई कोटकी ने बहुपात प्राप्त हुए ब्रह्म है समात ताकांत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नित्र कई कोट नाम रस पीव अमर पय सद सद ही जीव अमर पय सद सद ही जीव कई कोट नाम गुण गाव आत्म रस सुख सहज समाव अपने जन को सास सास समारे नानक परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलहारण है जल थल महियल सोए अष्टपदी करण करावण करण है जोग जो तिस पावे सोई होग खिन में था पुथा पणहार अंत नी किछ पारा वारा हुक्मे तार तर रहावे हुक्मे उपजे हुक्म समावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक सब मैं रहा समाई प्रभ पावे मान कगत पावे प्रभ पावे ता पत्थर त्रावे प्रभ पावे बिन सास ते राखे प्रभ पावे ता हर गुण पाखे प्रभ पावे ता पत दुधारे आप करे अपन बीचारे दुहा सिरे काप स्वामी खेले बिकसे अंतरजामी जो पावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवरने आवे कहु मानक ते क्या हो आवे जो तिस पावे सोई करावे इसके हाथ होए ता सब कुछ ले जो तिस पावे सोई करे अन जानत भिख्या मह रचै जे जानत आपन आप बचै पर मैं भूला जाय दिसता वै निमक माए चार कुंट फिरया वै कर कृपा जिस अपनी भक्त दे नानक तेजन नाम मिले खिन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाकर दृष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दै दिस प्रगटावै जाको अपनी करै बख्शीश ताका लिख नगने जगदीश जीव पिंड सब तिस की रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बणत आप बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई इसका बल नाही इस हाथ करण करावण सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस भाव है सोई फुन थियो कबू ऊंच नीच में बसै कबू सोग हरख रंग हसै कबू निंद चिंद व्यवहार कबू ऊब आकाश प्याल कबू बेता ब्रह्म विचार नानका मिलावन हार कबू नृत्य कर भूपात कबू सोय रह दिन रात कबू मां क्रोध विकराल कबू सर्व की हो दरवाल कबू हुए बैबट राजा कबू भिखारी नीच का साजा कबू अप कीरत में आवे कबू भला भला कहावे ज्यो प्रभ रख है तिवही रह गुर प्रसाद नानक सच कह कबू हुए पंडित करे बिख्यान कबू मोन धारी लावे ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबू कीट हस पतंग हुए जिया अनक जोन पर मैं परमिया नाना रूप जो स्वांगी दिखावे जो प्रभु भावे तिवे नचावे जो तिस भावे सोई होए नानक दूजा वरना कोई कबू साध संगते हो पावे उस स्थान ते बहुर न आवे अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मन तन नाम रते एक रंग सदा बसै पार ब्रह्म के संग ज्यो जल मैं जल आए खटाना त्यो ज्योति संग जो तस्माना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ के सद कुरबान श्लोक सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सुवान जो जाने वह जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरे बहुजोन प्रमावे तन भूमका जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे नानक इहा मुक्त आज्ञा सुख पावे तनवंता हुई कर गिरबावे तृण समन कछ संग न जावे बहु लश्कर मानक ऊपर करे आस पल भीतर ताका होए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन में होए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआई गुर प्रसाद जाका मिट अभिमान सोजन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हो तारे शरम पावे सगले बृथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार अनक जतन करा तुम नहीं द्रवै हर दरगह को कैसे गवै आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकने आवे सर्व की रेन जा का मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाना मुझते कछ होए तब इसको सुख नाही कोए जब भे जानना मैं किस करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे कहू बैरी मीत तब लग निचलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म रह दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे सहस खटे लख को उठतावे तृतन आवे माया पाछे पावे अनक भोग भिख्या के करे न तृपतावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसै प्राप्त होए करण करावण आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावण करण हार इसके हाथ कहां विचार जैसे दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो किछ किन्न स्वप्न रंग सबते दूर सबहु कै संग बुझे देखे करे विवेक अप है एक अप है अनेक मने न बिनसे आवे न जाए नानक सधी रहा समाए आप उपदेशा समझे आप आपे रचा सबके साथ आप किन्नो अपन विसार सब कछ उसका ओ करणहार उसते पिन कहो कि छोए थान थरन तरे कैसोए अपने चलित आप करणहार कौतक करे रंग अपार मन में आप मन अपने माही नानक कीमत कहन न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कोट मधे किने बिरला चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सरण बख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत शरण जो जन परै सो जन उदरण हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपति संत के दुख नार जा कटै संत के दुखन जमते नहीं छुट्टे संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन मत हुए मलीन संत के दुखन शोभा तेहीन संत के हते को रखे न कोई संत के दुखन थान भ्रष्ट हुए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक भीतर है संत के दुखन ते मुख पवे संतन के दुखन काग जो लवे संतन के दुखन सर्प जोन पाए संत के दुखन त्रिद जोन किरमाए संतन के दुखन तृष्णा में जलाय संत के दुखन सब को छलाय संत के दुखन तेज सब जाए संत के दुखन नीच नीचाए संत दोखी का थाव को नाहे नानक संत पावे ता ओए पी गत पाहे संत का निंदक महाताई संत का निंदक खेन टिकन ना पाई संत का निंदक महातियारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखी अर्दीन संत के निंदको सर्व रोग संत के निंदको सदा विजोग संत की निंदा दुख में दुख नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसे का निमित्त संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी को सब त्यागे संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुख ना सुख ते डरै संत के दुखी को ना ही ठाव नानक संत पावे ता ले मिलाए संत का दुखी अद बीच ते टूटे संत का दुखी कित काज न पहुंचे संत के दुखी को उद्यान परमाइये संत का दुखी उजड़ पाईये संत का दुखी अंतर ते थोथा जो सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किचना है अपन बीज आपे ही खाहे संत के दुखी को और न रखन हार सा नानक संत पावे ताले उबार संत का दुखी यूं बिललाए जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजा जो पावक ईंधन नहीं त्रापे संत का दुखी छुट्टे अकेला जो बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सद मिथ्या कहत कीर्तनंद का तुर ही पया नानक जो तुस्पावे सोई थे आ संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी न मरे न जीवाई है संत के दुखी की पूजन है आसा संत का दुखी उठ चल निराशा संत का दुख न तृष्टा कोई जैसा भाव है तैसा कोई होए पया कीर्तना मेटा कोई नानक जाने सच्चा सोए सब घट तिसके ओ करणे हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभ की उस्तत करो दिन रात तिसे त्यावो सास ग्रास सब कछ वर्त है तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना खेल अप करणे हार दूसर कौन कह विचार जिसनु कृपा करे तिस आपन नाम दे बड़ भागी नानक जन से सलोक तजो सियाण पसुर जनो सिमरु हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए अष्टपदी मानक की टेक बिरथी सब जान देवन को एक क्या भगवान जिस कह दिया रहे गाये बहुर न तृष्णा ला गया ए मारे रखे एक को आप मानक कह किछ नाही हाथ तिसका हुक्म बूझ सुख होए तिसका नाम रख कंठपुरोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघ्न ना लागे कोई उस्तत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सदव्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर ले जियो नैनो पेक ठाकुर का रंग साध संग बिन सह सब संग चरण चलो मार गोबिंद मिटह पाप जपिया हर बिंद कर हर कर्म शरण हर कथा हर दर गह नानक उजल मथा बड़भागी तेजन जगमाहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करह विचार से धनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछान इत उत क्यों सोझी जान नाम संग जिसका मन मान्या नानक तिन्ह निरंजन जान्या गुर प्रसाद अपना पसुझ जिसकी जानो कृष्णा बुझ है साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओ हर जन रहत अनदिन कीर्तन केवल बख्यान गृहस्थ में सोई निर्वाण एक ऊपर, जिस जन की आशा तिसकी कटिया जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिस न लागे दुख, जिसको हर प्रभ मन चित आवे, सो संत सुहिला नहीं डुलावे। जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो सेवक को किसते डरे, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सिज्या, गुर प्रसाद तत सब बुझ्या, जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सूखम सोई स्थूल। न किछ दिन में न किछ मरे, आपन चलत आप ही करे, आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट। आपे आप सगल में आप, अनक जुगत रच थाप उथाप, अवनाशी नाही किछ खंड, धारण धार रो ब्रह्मंड। अलख अभेव पुरख प्रताप, आप जपाए त नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो शोभावंत, सगल संसार उदर तिन मंत। प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख विसारण, आपे मेल ले कृपाल, गुर का शब्द जप पे निहाल। उनकी सेवा सोई लागे, जिसनो कृपा करे बड़ पागे, नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम करमान। जो किच करे सो प्रभ के रंग, सदा सदा बसे हर संग, सहज सुपाए हो ऐसो होए, करणे हार पछाण सोए। प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिससे उपजे तिस माहे सुमाए, ओ सुख निदान उन्हू बने आए। आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभ जन को जान। श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ, बिरथा जानन हार, जाके सिमरन उधरी है, नानक तिस बलिहार। अष्टपदी टूटी कंड अनहार गोपाल, सर्व जी आपे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन माहे, तिस्ते बृथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप, अवनाशी प्रभा पे आप, आपन किया कछु ना होए, जेसो प्राणी लो चै कोए, तिस बिन नाही तेरे कछ काम। गत नानक जब एक हर नाम, रूपवंत होए नाही मोह है, प्रभ की जोत सगल घट सु है। तनवंता होए क्या को गर्भ, जहाँ सब किश तिसका दिया दर्भ है। अत सूरा जे कऊ कहावे, प्रभ की कला बिना कहता वह, जे को हो बहदा तार, तिस देन हार जाने गवार। जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग, नानक सो जन सदा अरोग, ज्यो मंदर को थम मैं थमन, त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन। ज्यो पाखाण नाव चढ़ तर, प्राणी गुर चरण लगत निस्तर, ज्यो अंधकार दीपक प्रगास, गुरु दर्शन देख मन होए विगास। ज्यो महा उद्यान में हमारक पावे, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे, तिन संतन की बात छो तूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूर्ख काहे बिललाइये, पूर्व लिखे का लिखिया पाइये, दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तुम तिसे चितार। जो कच करे सोई सुखमान, भूला काहे फिरे अजान। कौन बस आई तेरे संग, लपट रिहो रस लोभी पतंग, राम नाम जप हिरदे माहे, नानक पत सेती कर जाहे। जिस वखर को लैण तू आया, राम नाम संतन कर पाया, तज विमान लेहो मन मोल, राम नाम हृदय मह तोल, लाद के पसंत है संचाल, अवर त्याग भिख्या जंजाल। धन धन कह सब कोय, मुख उजल हर दरगह सोए, एहो वापार विरला वापार है, नानक तां कह सब बलिहार है। चरण साध के धोए धोए पियो, अर प्रसाद कहो अपना जियो, साध की धूर करो स्नान, साधु पर जाइए कुर्बान। साध सेवा वडभागी पाइये, साध संघर कीर्तन गाइये, अनक बिघन ते साधु राखे, हर गुण गाए अमृत रस चाखे, ओट गही संतह दरियाया। सर्व सुख नानक तह पाया, मृतको जीवा लनहार, भूखे को देवत आधार। सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे, पुरब लिखे का लहना पाहे, सब किछ तिसका ओ करणे जोग, तिस बिन दूसर हुआ न होग। जप जन सदा सदा दिन रैणी, सब ते ऊच निर्मल ए करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया। जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत, भगत भगत सुनिए तहलोए, जाके हृदय एको होए। सच करणी सच ताकी रहत, सच हृदय सत मुख कहत, साची दृष्ट साचा आकार, सच वर्त साचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता। श्लोक रूप न रेख न रंग किच, त्रैगुण ते प्रभु भिन्न, तिसे बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न। अष्टपदी अवनासी प्रभु मन में राख, मानक की तू प्रीत त्याग, जिससे परे नहीं किच कोए, सर्व निरंतर एको सोए। आपे बिना पेदाना, गहर गंभीर गही सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद, कृपा निधान दयाल बख्शंद। साध तेरे की चरणी पाओ, नानक के मन एह नराओ, मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग। हरण भरण जाका नित्र फोर, तिसका मंत्र न जाने होर, अंध रूप मंगल सद जाके, सर्व थोक सुनिए करता कै। राज महराज जोग मह जोगी तप मह तपीसर गृहस में भोगी त्याय त्याय भगत सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला के मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जान पूत सगल परोई अपने सूत सो मत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्या वैसे ते गुण में जाको परमाए जन्म मरै फिरया वह जाए ऊंच नीच तिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेख करे करंग नाना बिद कीनो बिसार प्रभ विनासी एक अंकार नाना चलित करे खिन माहे पूर रहो पूर्ण सब ठाए नाना बिद कर बंत बनाई अपने कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवे नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे स्मृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगास पताल नाम के तारे सगलाकार नाम के तारे प्रिय सब पवन नाम के संग उदरे सुन सरवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सम महे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत तेजन जाके हृदय प्रवेश सत नृत बुझे जे कोय नाम जपता की गत होए आप सत की है सब सत अपे जाने अपनी मित गत जिसकी सृष्ट सो करने हार और न बूझ करत विचार करते की मितना जाने किया नानक जो तुस भाव है सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पे बिस्मात जिन बुझ तिस आया स्वाद प्रभ के रंग राच जन रहे गुर के वचन पदार्थ लहे उदाते दुख काटन हार जाके संग त्रै संसार जन का सेवक सोवड भागी जन के संग एक लिवलागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आज सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत ध्यावनहार आप सत सत सवधारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभु वक्ता सुरत सत सत दस सुनता बुझनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभु सोए सत स्वरूप हृदय जनमान्या करण करावण तिन मूल पछान्या जाके हृदय विश्वास प्रभु आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय ते निरभो होए बसाना जिसते उपजा तिस माहे समाना बस माहेले बस्त गडाई ताको भिन्न न कहना जाए बूझे बूझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक के अमन प्रतीत ठाकुर के सेवक के निर्मल रीत ठाकुर कौ सेवक जान संग प्रभ का सेवक नाम के रंग सेवक को प्रभ पालनहार सेवक की राख निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ धार नानक सो सेवक सास सास समारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर राखे अपने दास को देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत राखे ताकि गत मत कोई न लाखे प्रभ के सेवक कौ को न पहुंचे प्रभ के सेवक ऊंचते ऊंचे जो प्रभ अपनी सेवा लाए नानक सो सेवक दिस प्रगटाया नीकी कीरी मैं कल रखे पसंद कर लश्कर कोट लाखे जिसका सास न काढ़ ताप ताको राखत देकर हाथ मानस जतन कर्तव पात तिसके कर्तव्य बिरथे जात मारे न राखे अवर न कोय सरब जिया का राखा सोए काहे सोच करह रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपिय पिय मृत हेमान तंत्र पिय नाम रतन जिन गुर मुख पाया तिस किच अवनाही दृष्टाया नाम धन नम रूप रंग नम सुखर नाम प्रसंग नाम रस जो जन तृताने मंत्र नाम है नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कह सदकाम बोलो जस जे बात दिन रात प्रभ अपने जन की नीदात करह भगत आत्म कह चाहे प्रभ अपने सो रह समाये जो हुआ होवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण क्या एक न जानो आठ पहर प्रभ से हजूरे कहो नानक से ही जन पूरे मन मेरे तिन की ओट लहे मन तन अपना तिन जन देहे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसका दर्श सब पाप मिटावे अवर स्याण सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा श्लोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिसके संग सिख उदर नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल सेवको गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरे गुर बचनी हर नाम उचरे सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख विकार ते हटे, सतगुर सिख को नाम तन दे, गुर का सिख विभागी है, सतगुर सिख का हलत पलत सवार है, नानक सतगुर सिख को जी ना सुमार है, गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस को कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सद ध्यावे, मन वेचे सतगुर के पास, किस सेवक की कार्य रास, सेवा करते हुए ने कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बीस विश्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुर जिस हृदय हरनाओ, अनकबार गुर को बल जाओ, सर्व निदान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक कह अपनी कश परम, सहस स्याण पर ले आना जाइये, नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइये, सफल दर्शन पेखत पुनीत, पर सत चरण गत निर्मल रीत, भेटत संग्राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे, सुन कर वचन कर नागाने मन संतोखा, तंपतिया ने पूरा गुर अख्यो जा का मंत्र, अमृत दृष्ट पेख्या होए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस लय मिलाए, जेबा एक उसत अनेक, सतपुरख पूरन विवेक, काहू बोलना पहुंचत प्राणी, अगम गोचर परम निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने ना पाई, अनक भगत बंधन नित करे, चरण कमल हृदय सिमरे, सद बलिहारी सदगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, एहो हर रस पावे जन कोई, अमृत पीवे अमर सोहे, उस पुरख का ना ही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुणतास, आठ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे, मोह माया के संग न लेप, मन में रखे हर हर एक, अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परम मोह दुख तय तेनासे, तप्त माहे ठांड वरताई, अंत प्या दुख ना ठे पाई, जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेशे, पौ चूका निर्भो होए बसे, सगल व्याध मन ते खै नसे, जिसका सातन कृपा धारी, साध संग जप नाम मुरारी, थित पाई चुके ब्रह्म गवन, सुन नानक हर हर जस शरण, निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला, धारजन सगली मोही, अपने चरित प्रभाप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिन दूजा नाही कोय, सर्व निरंतर एको सोए, ओत पोत रव्या रूप रंग, भय प्रकाश साध के संग, रच रचना अपनी कल धारी, अनक बार नानक बलिहारी, श्लोक भजन बिख्या सगली छार,
1: हर नाम कमावना, नानक के तन सार अष्टपदी, संत दे नाम मिल करो विचार, एक सिमरन नाम आधार, अवर पाप समीत बसारो, चरण कमल दे नवर धारो, करण कारण सो प्रभ सम्राट, दृढ़ कर कहो नाम हर वाथो, एह तन संचो होवो भगवंत, संत जना का निर्मल मन ते कास राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे, जिस तन को चार कुंट उठ तावे, सो तन हर सेवा ते पावे, जिस सुख कौन तवा शमीत, सो सुख साधु संग प्रीत, जिस शोभा को करे भली करणी, सा शोभा पज हर की शरणियन को पावे, रोग ना जाए रोग मिटा रव खदलाए, सर्व निधान में हर नाम निधान, जप नानक दरगह प्रवान, मन प्रभो दो हर कह नाही, दै दे ताव ते आवे ठाए, ताको बिघ न लागे कोई, जा कर दै बसया रसोई, कल ताती ठंडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पाओ बिन सह पूर्ण हो आस, भगत भाया तुम प्रगास, तित कर जाए बसै अविनाशी, कहो नानक काटी जा फांसी, तत विचार कह जन साचा, जन्म रह चोका चोकाचा, आवा गुण मिटा ब्रह सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव, इं रतन जन्म का होय उधार, हर हर सिमर प्राण आधार, अनको भावना छूट न हारे, सिमरत साथ वेद विचारे, हार की भगत करो मन लाए, मन बचत नानक बल पाए, संग ना चाल तेरा ताना, तो क्याल बटावे मूर्ख मना, सो तुमी कुटुंब यार बनता, इन ते कहो तुम कवन सनाथा, राज रंग माया विस्थार, इन ते कहो कवन छुटकार, आसा तीरा तस्वारी, झूठा डंप झूठ पासारी, जिन दिए ते सबुझे न बेगाना, ना बेसार नानक भजताना, गुर की मातू ले आने, भगत बिना बड़ो बे सियाने, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के खेल विख जाहे, आप जो पवरा नाम जे पावो, संत कहत रहत गत पावो, सार बोल सदा को नाओ, सह सो भाई नानक गुण गाओ, गुण गाओ तेरी उतर समैल, बिन जय हो मैं बिख फैल, हो हे अचिंत बस है सुख नाल, सागिरा सर नाम संभाल, छाट सियान सगली मना, साध संग पावे सज तना, हर पूंजी संज करो व्यवहार, ईहां सुख दर गय जयकार, सरबन तरेखो देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख, एको जपे को सलाहे एक सिमरे को मनयाहे एक सके गुण गावनंत मन तन जापे भगवंत एको एक एक हरे आप पूर्ण पूर्ण रेव प्रभु व्याप अनक बिथा एक ते पै एक राज प्रास्त गए मन तन अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रभ दान कर कृपा देवो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म शब्दापुर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सा साह प्रभ तुम्हें ते आवो चरण कमल सोला कह प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत ए कोटि को आधार नानक मांगा नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्टि महासुख होए हरस पावे बिरला कोय जिन चाखिया उसे जन तृपताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सो पर परे प्रेम रस रंग उपजय चाओ साध कै संग परे शरणान सब त्याग अंतर प्रकाश आंदन लिवलाग बड भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवकी मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जान गो प्रभ होयो दयाल सेवक इनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख परम गया इस पुण्य श्रद्धा सब पूरी रब रहा सत्संग हजूरी जिसका सातन लिया मिलाए नानक भगती नाम समाए सो किम सरज काल न पाने सो किम सरज किया जाने सो किम सरज न सब कुछ दिया सो किम सरज जीवन जिया सो किम सरज जगन में राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाखे सो किम सरज देखते काटे जन्म जन्म का टूटा गांड है गुर पूरा तत् है बुझाया प्रभ अपना नानक जन्म त्याया साजन संद करो हे काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जो पवरा नाम जो पावो भगत भय तरी है संसार बिन भगति तनो सीशार सर्व कल्याण सुख निद नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल तो काओ तनास नानक नाम जो पगुंतास।

फिर जाप अष्टपदी। जब अकारे कछ न दृष्टेता पापों तब कहती होता, जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण तिहन न जापत तब हरक शोक कहो किस व्यापत। जब अपने आप आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परम। आपने खेले आप वर्ती जा नानक करण हार न दूजा। जब हो तो प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस को गनी। जब एक हर गम पार तब नर्क स्वर्ग कहो कौन उतार। जब निर्गुण प्रभ सह सो पाए तब से सकत कहो हो के तठाए। जब आप है आप अपनी जोत तरे तब कौन निडर कौन कत डरे। आपन चलते आप करना हार नानक ठाकुर गम पार। अविनाशी सुख अपने आसन तय जन मरण को कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो हो के सो होए। जब अवगत अगोचर प्रभे का तब चित्र गुप्त कश पोष रेखा। जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे। आपने आप आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो हो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभमान। जह स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शुद्र लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तह किसै भूख कवन त्रिपतावे। करुण करावन करुणाहार नानक करते का नाही सुमार। जब अपनी शोभा

जाबे अपने आप और तारे तव सगन आप सगन कहा विचार है जय अपनो ते अपने आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कही है तेरा बिस्मन बिस्मर बिस्माद नानक अपने गत जानो आप जय अशल अशेद अभेद समाया

जह एक है एक एक भगवंता तै कौन चिंत किसला दे चिंता जह अपना आप आपतियारा तै कौन कथा कौन सुनना हारा बहु बेअंत उचते ऊंचा नानक आप सको आप है पहुंचा जह आप चो प्रपंच कार ते हुण मैं कीनो विस्तार पाप बुनता पे कहावत को नरक को सुर्ग वंशावत आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पै पार दोख सुख मान अपमान अनक प्रकार की ओ बखियान आपन खेल आप कर देख है खेल संको चैतो नानक एक है जय आवगत भगत है आप जय पसरा पसार संत प्रताप दो भाक का पै धनी उनकी शोभावन हो बनी आपै कौत कर आनंद चोज आपै रस भोगन निर्जोग जिस भावै तस अपना इलावै जिस भावै तस खेल खिलावै।

पूर्णपुर रह दयाल सब प्रहोत कृपाल अपने करतब जाने आप अंतर जामी रहो ब्याप प्रतपाल जी अनुभव पान जो जो रचत सत्य हाथ।

जाके मन बसया निरंकार बंधन तोर पे निर्वैर अंधन पूजय गुर के पैर। एह लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ अपह मेले। साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम तद करो विचार दुर्लभ देखा करो उधार। अमृत वचन हर के गुण गाओ प्राण तरण का है सुहाओ आठ पहर प्रभे खो नेरा मिटे ज्ञान में से अंधेरा सोन उपदेश हिरदा बसाओ मन छे नानक फल पाओ। हालत पलत दोले सुवार राम नाम अंतर उतार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसाय तिस साच परिखिया। मन तर नाम जपो लिवलाय दुख दर्द मन ते पौ जाए सच वपार करो वपारी दरगा निबह खेप तुम्हारी। एक काटे करुख मरमा ही नानक बोरण आवे जाहे तेहते दूर कहां को जाए उबरा राखन हार ते आए। मेरे पाओ जपै सगल पाओ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन

अष्टपति पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद आ

बखानी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै।

0: गुरु जी की फतेह।
1: साहिब संभाले पंथ निहाले असां भी उत्थे जाना, जिसका किया ते नहीं लिया हुआ ते सह का पाना। डीएसपी साहब अर्जन सिंह जी की मिठी याद में जुड़ बैठी परम सत्कार जो साध संग जी हो, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। डीएसपी साहब जी की मिठी याद में पहली बरसी मनाते हैं उन्होंने परिवार वालों श्री सुखमनी साहब के पाठ से कीर्तन ते नाल लंगर की सेवा हो रही है। गुरु कृपा करे विशी रूह सदा अपने चरणों च वासा दे, उसके पिछे परिवार को यह सहत कह सदमा सहन का बल बख्शे, सुख शांति वरते अकाल पुरख परिवार के अंदर। हुण कीर्तन होगा जी, ठीक समा उन्होंने पता है, आपां 5:30 तो पहले समाप्ति करनी है, 5:30 इत्थे रहराज साहब का पाठ आरंभ होना जी। सो आओ हुण आपां कीर्तन सरवण करिए, उस तों बाद अरदास ते हुकमनामा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

राम रस पिया रे जेह रस बिसर गए रस और मुए क्या रोई है जो आपा फिर ना रहाए। बंदिया जिस आसन हम बैठे केते बैस गया, पता नहीं किन्ने के इत्थों आके चले गए, कोई गिनती नहीं है। आपो अपनी वारी दे नाल सब नू जाना पैना, कोई भी इस संसार ते थिर नहीं रह सकया। शेख है आती जग ना कोई थिर रहया, जिस आसन हम बैठे केते बैस गया। वारी आपो अपनी कोई ना बंदा थी। सुगुरु प्यारे साडे सत्कार योग स्वर्गवासी रिटायर्ड SSP स्वर्गवासी सरदार अर्जन सिंह जी, जिन्हां दी मिठी प्यारी सलाना याद विच आपां जुड़ बैठे हैं। सतगुरां ने उन्हां नूं जिन्ने सुवास बख्श कीते सन, सुवासां दी पूंजी पूरियां करके पिछले साल इस मात लोक तों रुखसत हो गए सन। परिवार उन्हां दी मिठी प्यारी याद मना रहा है सत्कार योग। उन्हां दे धर्म पत्नी बीबी तरन कौर जी अते उन्हां दे सपुत्र सरदार कुलविंदर सिंह जी, सारा ही परिवार बहुत ही निघा परिवार, गुरु घर नाल जुड़िया होया परिवार है। गुरु चरणा विखे अज इन्हां ने विछड़ी आत्मा दिन में श्री सुखमनी साहब जी दे पाठ करवाए ने। कलयुग मैं कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपी ऐ लाए ध्याना, आप तरह सगले कुल तारे हर दरगह पत सिंह जाए। आओ मैं ज्यादा समा आप जी का नहीं लैना, 10 मिंट आपां दो शब्द गायन करके फिर आप जी पासों कि मे हो जाना अरदास बेनती होगी, सतगुरां का मुख वाक होगा। प्यार सहित मिल करके गायन करिए।

बाढ़ परानी जो जन्मे सो जानो मुआ गोविंद भगत अस्थिर है थिया जो उपजियो सो बिन सह परो आज के काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजा जो उपजिया है जो पैदा होया है उसने बिन